वन गमन के लिए तैयार श्री राम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे।

किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ, बाघ, भेड़िये, सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

0: इसी के साथ रामचरितमानस का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा।

दा प्लेम इंडिया मंगे नए जारिंग अंतर शहजाद भट्टी जुरु बिचार अतर सबूत मंगाता कान भावा इंडिया ममांदांग मसाला टेररिस्ट में देंगान संगत सीरियस मंत्री पर दादांगन इंद्रुस्ती पीयूष गोयल मनीरोति समाकिन दालम नियादान प्रिंटिंग न्या सचार स्ट्रैटेजिस कमेट्रेन इंडिया जेपांग सरता मंगुंदांग परुसान परुसान जेपांग उन्तुक मम पर दालम इन्वेस्टासी दान कमित्रान मरे का दी इंडिया सात बड़ भी चरा का पड़ा देलीगासी जेपांग दी न्यू दिल्ली पीयूष गोयल मंगाता कान बावा इंडिया दान जेपांग ममिली की कमित्रान यंग एरात दान बड़ कलांजु तान यंग बराकार पड़ा आस्पिरासी बरसामा उन्तुक पर दामयान कमाजुआन दान का मकमुरान दी इंडो पैसिफिक दिया मंचातत बावा का हादिरान देलीगासी दाड़ी प्रिफेक्टर यमनासी मंचरमीन खान समाकिन लुआस निया कमित्रान भी लेतल हिंगा का बर बागी नगेरा बागियन दान विलाया इंडिया पीयूष गोयल मंगाता कान बाहवा पर दादांगन भी लेतल इंडिया जेपांग तेला मंचा पाए दुआ तू जूती तिक लीमा मिलियन डॉलर पाड़ा ताहुन का उवांगान ताहुन दुआरी बुधु अपलू नम ताहुन दुआरी बुधु अपलू माफ कान ताहुन दुआरी बुधु अपलू लीमा ताहुन दुआरी बुधु अपलू नम सेमंतारा जेपांग सेमंतारा जेपांग किनी मंजा दी सुम्बर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तरबसार कलीमा बागी इंडिया इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च INDRA तिलामनाइन कान परकीरा अन पर तुम्बुहान पे डेबे इकोनॉमी इंडिया पाड़ा ताउन दुआ रिबु दुआ प्लू नम ताउन दुआ रिबु दुआ प्लू तुजू सबेसार सपुलू बासिस पॉइंट मंजादी नम तितिक दिलापन परसेंट दाड़ी पर कीरान नम तितिक तुजू परसेंट यांग दीप्योक्सी कान पाड़ा बुलान मई नामुन लेम्बागा पमरिंकाता माफ कान नामुन लेम्बागा परिंकात तरसबुत मम परिंकात कान बाबा पोला च्वाचा एलिनो दान हम्बातान जियो पॉलिक दापात मम्बानी मोमेंटम इकोनॉमी हिंगा पर तुम्बुआन तेता बराडा दी बाबा पर किरान सेमंतारा नेशनल स्ट्रेटिकल ऑफिस NSO सबिसार तुजू तितिक नम परसेंट उन्तुक ताहुन का उवांगन ताहुन दुआरी बुधु अपलू नम INDRA मनोरुनकन अजम सी हारगा मिन्याक मेंता दासारनिया उन्तुक ताहुन का उवांगन दुआ पुलू तुजू सबेसार सपुलू डॉलर मंजादी लीमा पुलू लीमा डॉलर पर बैरल दारी पर किरान सबलुमिया सबेसार संबलान पुलू लीमा डॉलर इंडिया आरे मम प्रयोक्सिकन पर तुम्बुआन GVA परतानियन मलामबात मंजादी दुआ परसन पाड़ाता हुन का उवांगन दुआ पुलू तुजू दारी 3% पाड़ाता हुन का उवांगन दुआ रिबु दुआ पुलू नम सबुआ लोकासी परतांबांगन इमास आर्टिसनल रुंतु दी बागियन भारत रिपब्लिक अफ्रीका तेंगा मुनिवास कान सती डाकनिया तिगा पुलु पनामबांग दान मुनिबाप कान पनामबाग लाइनिया तरजेबाग तांबांग तरसबुत रुंतु बागी दी माफ कान तांबांग तरसबुत रुंतु बागी इनी दी विलाया आबा प्रिफेक्टर नाना मामब्रे मनोरुत फ्लोरिन गाउंदे साला सातु पनामबांग यांग सलामत दिया मंगाता कान पारा पनेलामत सडांग मंचारी पनामबांग तांबाहन यांग दिया किनी तरजेबाग तथापि पलवांग उन्तुक मनेमुकन मरे का दालम काडान हिदुप समाकिन कचिल दी सीनी सियारान लोअर नगरी ऑल इंडिया रेडियो तेंगा मनियाम पाइकन वार्ता बरिता कमन तेरियन परतहनन UAE अरब मंगाता कान बाहवा सिस्टम परतहनन उदारानिया मनेदेक्सी दुआरु दल बालिस्तिक यांग दिलुंचुर कान दारी ईरान मनुजु नगेरा तर सबुद्दान मनम्बाह कान बाहवा कदुआ रूडल जातू कलाउत कमंतियन मंगाता कन रूडल परतामा जातू दिलुआर परायरान तेरतेवल UAE समंतारा रूडल कदुआ जातू दिदालम परायरान तेरतोलनिया कमंतियन मनेगास कन बाहवा UAE तताप दालम स्तातू सियागा तिंगी दान सपनोनिया सियाप मंगादापी पोतेंसी अंचामन आपापुन हाल इनी तरजादी तेंगा मनिंगातनिया कंबाली कतेंगान दी कावासन तलुक देंगन ईरान मंपर लुआस ऑपरासी मिलिटर निया तरहदब सकुतु अमेरिका सरिकात समंतारा मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU एमपत बेलास पॉइंट यांग दी तांडा तांगा निपाडा जूनी उन्तुक मंबू का जालुर पंबी चांद टेक्निक्स गुना मंगाहरी कॉन्फ्लिक्ट आसिया भारत बराहे कमारिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया जनरल धीरज सेठ मनेमुई प्रधानमंत्री नेपाल बालेन्द्र शाह दी काठमांडू
sebagai bagian

मी बाबाताना तरनाक दान काही दुपान मरे का संदिरी सालिंग बरकाय बरकायतान एरात मंतरी मंगेम्बार का पांडवान तर सबुत सबा गए लंका पेंटिंग उन तुक मंगा को इकोसिस तमालम तर बुक का इंडिया दान मनिकान कन पर्लुनिया कंजर्वासी बर्बासिस इल्मु पंगेता हवन तर हदाप इकोसिस्टम तर सबुत बरसामा देंगन हुतान दिया बरहारप पांडवान तर सबुत दापत मंग इंस्पिरासी पमहामान दान कंजर्वासी यंग लबी बसार तर हदाप इकोसिस्टम इकोसिस्टम इनी पांडवान तर सबुत दिलुंचुर कान दालम अचारा सांपियांगान रेस्मी यूएनसीसी डीसीओपी 17 दिबावा नौंगान दान बिम्बिंगान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुब्लिकासी पांडुआन दान आचारा तरसबुद्दी सेलंगारा कन ओले अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट अत्री बकरजा सामा देंगान इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन दान स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC इसरो आचारा तर सबूत मम पर तेमुकन पर वाकिला अंदाड़ी पमरिंता लिम्बागा इल्मिया दान पनेलितियन ऑर्गनासियासी इंटरनेशनल सरता मास्यारा कत सिपिल प्रेजेंटासी दान दिस्कूसी मनियोरोती करागामान दान परसेबारान पांदांग रुमपुत सरता वंस दी इंडिया पेंटिंग्या इकोलॉगी मरे का दान परान रिस्तोरासी न्या दालम मंचापाय टारगेट लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN इंडिया कबूतुहन आकान पंगेताहवन इलम्या यांग लभी कुआत पनिंकात कान पनलियान दिग्रेदासी लान सरता परेंचाना आन पाड़ा तिंकात लांस्काप जुगा दीतेकानान कान पांडवान तरसबुत मंग हिमपून इन्फॉर्मासी मंगे नए बरबागी इकोसिस्टम आलाम तरबु का उतामा दी सलुरु इंडिया यांग मंचा को कौंदीसी जियोग्राफिस कैस्टस्टिक इकोलॉजिस कनेका रागामन हायाती सरता कॉम्युनिटास दानसुकु यांग तरकाय देंगान्या पांडवान इनिजुगा ममुआत बागियन तमातिक मंगे नई पंगेम्बालान इकोलॉगी का बाकारान दान पनेरापन कार्बन ONES इंडिया मम्बेंतांग दाड़ी पांदांग रुमपोतनिया हिमालया दान तेराई हिंगा लांस्काप थार दनबानी सबाना देकान दातारान तिंगी बर्बातु लाहन बरजुआरांग लहन समाक इकोसिस्टम पसिसिर दान लांस्काप गुरुन इकोसिस्टम इकोसिस्टम इनी मंदुकुंग का अनेका रागामन हायाती यांग बरागाम बर कॉन्ट्रीब्यूसी तरह दा प्रोसेस ताना दान आयर मनिम्पान कार्बन दान जुमला बसार दी दालम ताना सरता मनुम्पांग माता पंचाहार्यन बरबासिस पंगम्बालान पतरना कांदान परतानियान आचारा तरसबुजुगा मनाम्पिल कान दुआ दिस्कुसी फायर साइड चैट देंगन पारा आहली नेशनल दान इंटरनेशनल लेम्बागा इल्मिया मास्यारा का सिपिल सरता ऑर्गनासियासी यांग बर फोकस पाडा कॉम्युनिटास दिस्कोसी बर फोकस पाडा कंजर्वासी दान रेस्टोरासी पादांग रुमपुत सरता लहान करिंग ताता कलोला पांदांग पंगेम्बालान यांग बर पुसात पाडा मास्याराकत कतहनान इक्लिम सरता लांका लांका कलम्बागान इल्मिया दान का बीजाकान यांग दी पड़लुकान उन्तु कंजर्वासी दान पंगिलोलान ONES सचारा बर कलंजुतान पाडा स्काला लांस्काप पल्लुंचुरान तरसबुत मनेगास कान कम्बाली कमिटमेंट इंडिया तरहादप पंदेकातान बरबासिस इल्मु पंगेतावान दान लांस्काप दालम रेस्तोरासी लाहन दान पंगिलोला आन लाहन बर कलांजुतान हाल तरसबुत मंगारिसी बावाई पल्लुनिया ममासुकान पांदांग रुमपुत पादांग पंगेम्बाला दान इकोसिस्टम आलम तरबु कलानिया का दालम दिस्कुसी उतामा मंगेनाई दिग्रदासी लान कंजर्वासी काने का रागामन हायाती कतानान इक्लिम दान माता पंचाहार यान बर कलांजुतान पांडुआन तरसबुत दिहराप कन मंजा दी सुम्बरदाया यांग बरहागा बागी पंबुअत का बीजा कन पनेलिती प्राक्टिस कंजर्वासी लेम्बागा पंबांगुआन दान मास्याराकत यांग बकरजा उन्तु कंजर्वासी रिस्तोरासी दान पंगलोलान बर कलांजुतान पांदांग रुमपुत सरता ONES लाइनिया दी इंडिया पलोंचुरानिया दी COP 17 जुगा मंबड़ी कन प्लेटफॉर्म पेंटिंग बागी इंडिया उन्तुक मनाम्पिल कन भरागाम इकोसिस्टम तरबुकानिया दान मंपरकुआत रिप्रेजेंटासिन या दालम दिस्कुरुस ग्लोबल मंगे नए रिस्तोरासी लान
pandang

सौडारा सौडारा आचारा कामी उन्तुक बिसुक अडाला सबा गई बरिकुद सतेला वार्ता बरिता लागू इंस्ट्रूमेंटालिया कोमेन तारला गुरा क्यात प्रोग्राम स्पॉटलाइट लागू लागू नॉन फिल्म दा नाहरनिया सारी आचारा इसुक हारिनिया सौडारा सौडारा अंडा बी से अमंग क्रीम कन लापुर अंदान सारन अंडा मला लुई पॉस ए लताऊ ईमेल हारप दी चातित ईमेल कामी सबा गई बरिकुद ए आई आर तितिक इंडोनेशिया 3733@gmail.com कामी उलांगी AIRTITIC Indonesia 3733@gmail.com लापुरान अंडा तितब दी तुंगु दी मेजा तुगास कामी दी स्टूडियो दी सीनी।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देशभर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा

0: है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
1: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस

0: किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए विकसित भारत के लिए

0: लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satendra Jain and 5 others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in the kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over 2 tranches spanning 6 months. The National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a 4-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of the examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. Jharkhand government last night released a list of 44 recruitment exams that have been cancelled due to irregularities amid students' protests over the issue. Here is a report.
3: The Jharkhand government has cancelled 44 recruitment examinations conducted by JPSC, JSSC and outsourced agencies, including the JSSC CGL and examinations conducted by TDPL. The cancelled examinations include the JPSC 11th to 13th Civil Services examinations, CDPO, Drug Inspector, Civil Judge, Assistant Conservator of Forest, Forest Range Officer, Assistant Professor and other recruitment examinations. The government has also cancelled examination results results where the preliminary work was conducted by TDPL, even if another agency subsequently

0: In his editorial piece, The Courage That Refuses to Look Away writes that World Humanitarian Day honors the selfless service of humanitarian workers, but they need protection and funding, not just applause. Trump cites CEC India poll rules to push US voter ID bill, states Hindustan Times. Pakistan Supreme Court orders Imran Khan be moved to hospital, reports The Asian Age. And finally, vocational education third language must for class 9 from the current academic session, writes The Times of India about Delhi government's revised class 9 examination and promotion policy. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satender Jain and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाब्तगियों की वजह से मंसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और पांच दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिद अरब इमारात ने ईरान से मिजाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टेलवीन में आज एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मस्कूरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मस्कूरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस एलपीजी सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर एनटीए सवाल नामों को चेक करने का 4 सथी निजाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी एनटीए के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां सीआईएसएफ की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में एनटीए ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो

0: बेजाबतगियों की वजह से मंसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि मनसूख किए गए इम्तहानात में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, जेएसएससी और एक एजेंसी टीडीपीएल समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तहान शामिल हैं। जो इम्तहान मनसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तहान शामिल हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और दीगर इंतजामी नीज तकनीकी ओहदों पर भर्ती के इम्तहान भी मनसूख किए गए हैं। सरकार ने 6 इम्तहान मुलतवी करने और 17 इम्तहानात की सीआईडी तहकीकात का भी हुक्म दिया है। जेपीएससी और जेएसएससी इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक केसों के लिए हाईकोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की जाएगी। इन दोनों कमीशनों में दाखिली विजिलेंस शोबे भी बनाए जाएंगे, जबकि आला आईएएस अफसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी इम्तहानात के निजाम में इस्लाहात की सिफारिश करेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के साबिक सीईओ उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी को साफ करने के प्लांट्स को जदीद तर्ज पर ढालने और उन्हें बेहतर बनाने से मुतालिक टेंडर के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और मुजरिमाना साजिश के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विजिलेंस डायरेक्टोरेट की शिकायत पर इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। छानबीन के दौरान ये मालूम हुआ कि टेंडर के अमल में एक मखसूस टेक्नोलॉजी फर्म को फायदा पहुंचाने के मकसद से शरायत रखी गई थी, जिससे टेंडर का अमल महदूद होकर रह गया और एक मखसूस प्राइवेट कंपनी को नामुनासिब फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा छानबीन से ये भी इंकशाफ हुआ कि टेंडर के अमल में हेराफेरी करने के लिए कुछ अफराद मुबैना तौर पर कुछ सरकारी अहलकारों और बिचौलियों के साथ राबता कायम किए हुए थे। बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने कहा है कि इससे कुछ अफराद और सरकारी अहलकारों के दरमियान मुबैना साजबाज का पता चलता है। रकम के लेन देन और इस जुर्म से हासिल होने वाली मुबैना रकम की पूरी जांच की जा रही है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मगरबी बंगाल में कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 6 जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक आग लगने का यह वाकया रात देर गए 2 बजे के आसपास पेश आया। मालूम हुआ है कि 5 मंजिला इमारत की 3री मंजिल से घना धुआं उठता हुआ देखा गया। इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि मस्कूरा होटल में आग बुझाने से मुतालिक कोई निजाम नहीं था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और इलाकाई और बैनुल अक्वामी सलामती को खतरे के ताल्लुक से तश्वीश का हवाला देते हुए अगले हुक्म तक ईरान के साथ तमाम तरह की तिजारत, कमर्शियल सरगर्मियां और माली लेन देन मुअत्तल कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने वजारत खारजा में कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हामिली ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बैनुल अक्वामी कानून और आलमी मेयारात के मुताबिक खित्ते के इस्तेहकाम की हिफाजत करना और बैनुल अक्वामी मालियाती निजाम की सालमियत को बरकरार रखना है। इस ऐलान से कबल यूएई ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने ईरान की तरफ से खलीज की तरफ दागे गए 2 बैलिस्टिक मिजाइल का पता लगाया था। बाद में वजारत दिफा ने बताया कि ये दोनों मिजाइल बहरी जहाजरानी को निशाना बनाने के मकसद से दागे गए थे जो समंदर में जा गिरे। यूएई ने कहा है कि वो अमन और इस्तेहकाम के जरिए के तौर पर मुजाकिरात, बाहमी तआवुन और इलाकाई हमाहंगी के तई अहदबस्ता है। ईरान की तरफ से यूएई के इल्जामात के सिलसिले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम ईरान ने इंतबाह दिया है कि आबनाए हुरमुज तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमरीका के साथ कोई अमन मुआहदा न हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुजाकिरात कारों की टीम से कहा है कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात को तब तक के लिए रोक दें जब तक कि ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सिफारती राबते के सिलसिले में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है कि जब आबनाए हुरमुज की सूरतहाल और अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में

0: इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाज़ बयानात सामने आ रहे हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि वो अपने हुर्मुज़ को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 निकाती मुफाहमत नामे के तहत वादों को पूरा नहीं करता, जिसमें नाकाबंदी खत्म करना, ईरान के मुंजमद असासों को जारी करना और उसके तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी लाना शामिल है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। ओडिशा के शिमाली हिस्से में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन है। तुगयानी पर आए हुए दरियाओं से 6 जिलों के बड़े इलाकों में पानी भर गया है और तकरीबन 10 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। अखवापाड़ा के मकाम पर बैतरनी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि ब्रह्मनी, सालंदी और सुवर्णा रेखा दरिया भी तुगयानी पर हैं, जिसकी वजह से कई गांव पानी से घिर गए हैं। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सैलाब से मुतासिरा लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भद्रक, बंडारी, पोखरी और थीडी ब्लॉक सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जहां गांव जेरियाब आ गए हैं और मामूल की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। जाजपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, केवंझार और मयूरभंज में भी सैलाब का पानी भर गया है और बहुत से लोगों को इमदादी अशिया, शेल्टर, खाने और पीने के पानी की किल्लत का सामना है। ब्रह्मनी और सालंदी दरियाओं में तुगयानी से बहरान बढ़ गया है, जबकि बैतरनी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सैलाब से खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत भी पैदा हो गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों में एहतियात के तौर पर बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमें अगले राउंड के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। भारतीय टीम के पास 2 मैचों से 3 पॉइंट हैं और उसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 1 ड्रॉ की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 2 मैचों से सिर्फ 1 पॉइंट है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने कल नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप में शानदार जीत दर्ज की। मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स फिल्मोन को हराया, जबकि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। लक्ष्य सेन ने पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स फिल्मोन को 16-21, 21-8 और 21-4 से शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सीधे मुकाबलों में अमरीका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को 21-15 और 21-12 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मर्दों दूसरी जानिब खवातीन के डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की भारतीय जोड़ी बल्गारिया की स्टेफनी स्टोएवा और गैब्रियला स्टोएवा की जोड़ी से 21-7 और 21-14 से हारने के बाद इस चैंपियनशिप से बाहर हो गई। मर्दों के क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन आज अपनी दूसरी इनिंग्स कल के 4 विकेट पर 84 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। ये मैच श्रीलंका के गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कल शाम मैच खत्म होने पर सोनल दिनुशा और धनंजय दे सिल्वा क्रीज पर थे। इससे पहले भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर आउट हो गई थी। इस तरह श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था। भारत ने पहली इनिंग्स में 462 रन बनाए थे, जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन ही बना सकी। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। फुटबॉल में आज एसिड बंगाल FC का मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 135वें डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की नजर फाइनल में जगह बनाने पर होगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने ब्रिक्स ममालिक के वज़राए माहौलियात की मीटिंग से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने ماحولیات، جنگلات اور موسمیات

0: की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि ब्रिक्स की भारत की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस नजरिए से रहनुमाई हासिल करती है जिसमें तरक्की पजीर ममालिक और ग्लोबल साउथ के खदशात को एजेंडे में तरजीह दी गई है। अखबार इनकलाब ने वजारत दिफा के जरिए मुल्क सतह पर तैयार की जाने वाली 405 दिफाई मसनूआत की छठी फहरिस्त जारी करने से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जुमरात को तमिलनाडु में होगी, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिद अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे नीता सूरमा द्वारा राग मिश्र भैरवी में ठुमरी व दादरा गायन। इनके साथ संगत करेंगे हारमोनियम पर बबलू खान और तबले पर शांति भूषण झा।

وَإِذَا

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
1: The investment story.
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ஆங்கன். घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। और अब बात करते हैं कुछ मौसम बदलने की। मौसम बदल तो रहा है लेकिन सावन तो चल ही रहा है, क्योंकि जब तक रक्षाबंधन है तब तक तो सावन है ही। तो सावन की बात जब हम करते हैं, हमने खूब ढेर सारी आपसे बातें की सावन के बारे में और इस दिन के बारे में, बारिश के बारे में, लेकिन एक खास तौर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर कभी कभी जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सावन कुछ कुछ कहता भी है कि कभी बारिश को महसूस कीजिए, मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतरने दीजिए, पेड़ों की हरियाली को देखिए और अपने पुराने किसी खूबसूरत पल को फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस सावन जो भी आपको याद आए या मुस्कुराइए थोड़ा और प्रकृति को महसूस कीजिए और उन लोगों को याद कीजिए जिनके साथ आपने बारिश में कोई खूबसूरत याद बनाई हो। तो फिर, क्योंकि सावन सिर्फ आसमान से बरसता नहीं, सावन तो यादों में बरसता है, रिश्तों में बरसता है और दिल के किसी कोने में छुपी खुशियों को फिर से हरा भरा कर देता है और जगा देता है।

और अभी आप ये सुन रहे थे गीत प्यारा सा, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, और फिल्म थी विश्वनाथ। दोस्तों आज बहुत सारे दिन हैं, आज बहुत सारे दिनों की बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस की। कहते हैं एक तस्वीर 1,000 शब्दों के बराबर होती है। सच भी है, एक तस्वीर सिर्फ किसी पल को कैद नहीं करती, बल्कि उस पल से जुड़ी हमारी भावनाओं, यादों और कहानियों को भी हमेशा के लिए अपने साथ रखती है। बचपन की वो तस्वीरें, परिवार के साथ बिताए खास पल, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, किसी खूबसूरत सफर की याद, या फिर किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कुराहट, जब हम तस्वीरों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जब कुछ समय के लिए पल वहीं से लौट के आ गया हो। और आज मोबाइल फोन ने फोटोग्राफी को हर किसी के पहुंच में ला दिया है। अब खूबसूरत तस्वीर लेने के लिए हमें महंगे कैमरे का होना जरूरी नहीं है, और ज़रूरी तो बस एक खूबसूरत नज़र जो साधारण पल के लिए खासियत खोज सके। तो आज विश्व फोटोग्राफी दिवस पर क्यों ना हम सिर्फ तस्वीरें खींचने के बजाय पलों को महसूस करने की कोशिश करें। कभी आसमान में बदलते रंगों को कैमरे में कैद कीजिए, कभी बारिश की बूंदों को, कभी फूलों की मुस्कान को, कभी अपनी और अपनों की वो मुस्कान जिसे देख कर आपका दिन बन जाता है। और हाँ, आज अपनी गैलरी में मौजूद किसी पुरानी तस्वीर को ज़रूर देखिए, हो सकता है उस एक तस्वीर के पीछे कोई खूबसूरत याद आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आए। कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाता, वो ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को यादों में बदल देता है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में एक गीत, फिल्म थी रोमांस। और अब बात करते हैं कुछ विश्व मानवतावादी दिवस की। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही दिन की, क्यों एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म, कोई पहचान और कोई रिश्ता नहीं। मानवतावाद का अर्थ है दूसरे इंसान के दर्द को समझना, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना या बिना किसी भेदभाव के इंसान को इंसान समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा या बहुत बड़े साधन होने चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि मानवता की शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। यानी किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, भूखे को खाना खिला देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना या फिर किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला देना, ये सभी मानवता के खूबसूरत उदाहरण हैं। दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, बीमारी, कई तरह के संकट आते हैं। ऐसे समय में मानवतावादी कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन, दवाइयाँ, पानी और ज़रूरी सहायता पहुँचाते हैं। उनका संदेश यही होता है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। तो आइए एक छोटा सा संकल्प हम भी कर लें कि जहां किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम अपनी क्षमता के अनुसार उसका साथ देंगे। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े कदमों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मीठी सी मुस्कान और एक संवेदनशील दिल ही किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। मानवता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि इंसान बने और इंसानियत को जिंदा रखें और सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। आइए सुनिए राधा पांडवल की आवाज में गीत।

और अब बात करते हैं, हम आज याद कर रहे हैं दक्षिण भारत के सिंह कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता एस सत्यमूर्ति को। वे वकील, सांसद और मद्रास के मेयर भी रहे। गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। सत्यमूर्ति जी को दक्षिण भारत का शेर कहा जाता था। उनकी ओजस्वी वाणी और देशभक्ति के हजारों युवा प्रेरित हुए। उन्होंने हमेशा कहा, देश पहले बाकी सब बाद में। उनके विचार आज भी हमें ईमानदारी, साहस और सेवा की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, अब बात करते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति, महान विधिवेत्ता और शिक्षाविद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ और कानून, शिक्षा और राजनीति तीनों क्षेत्रों में उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

मंत्री रही, केंद्रीय मंत्री रही और पंजाब महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। 1992 से 1997 तक उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। शर्मा जी सादगी, शालीनता और संविधान के प्रति निष्ठा के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा कहा, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। उनके विचार और सेवा भाव आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और अब बात करते हैं कुछ खास आज के दिन के, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और साहित्य के सूर्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती की। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आड़तारा गांव में हुआ था। वे सिर्फ लेखक ही नहीं थी, वे एक युग लेखक थे। निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और संस्कृति के महान ज्ञाता थे। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई दी। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अशोक के फूल, कुटज जैसे ग्रंथ आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत की मिठास और लोक जीवन की सादगी दोनों मिलती थी। वे कहते थे, मनुष्य ही साहित्य का केंद्र है। उन्होंने पुरानी परंपराओं को नए नजरिए से देखा और बताया कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उनके विचार आज भी जीवित हैं और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं।

और अब बात करते हैं कुछ महान संत, योगी और समाज सुधारक पार्श्वनाथ का जीवन त्याग, सेवा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण, सत्य और धर्म के प्रचार में समर्पित किया। उनकी शिक्षाओं का मूल मंत्र था, सेवा ही सच्ची पूजा है। वे कहते थे, ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि हर भूखे, गरीब और ज़रूरतमंद की सेवा में बसते हैं। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और भेदभाव को दूर करने का काम किया। पार्श्वनाथ जी का योग, ध्यान और सादगी भरे जीवन से लोगों को आत्मबल और चरित्र निर्माण की प्रेरणा मिली। इसी संदेश के साथ सच्चाई, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाकर लोग अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे, यही उनका मानना था। और साथ में आज बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की। उनका जन्म 1554 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गाँव में हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के समय उनके मुंह में 32 दांत थे और वे राम कहते हुए पैदा हुए थे। बचपन का नाम उनका था राम बोला। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में लगा दिया। उन्होंने संस्कृत में लिखे रामायण को आम जनता की भाषा अवधि में लिखा ताकि हर कोई प्रभु की कथा सुन सके, और इसी का परिणाम है हमारा प्रिय ग्रंथ श्री रामचरित मानस। और इसके अलावा उन्होंने सियाराम में सब जग जानी, इस एक लाइन में उन्होंने पूरे विश्व को प्रेम विश्वास का संदेश दिया। हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली जैसी रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों को शक्ति देती हैं। तुलसीदास जी कहते थे, खासकर उनकी रचनाओं में भक्ति, ज्ञान और नीति तीनों का संगम होता था।

दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

सम सक्षम सत्य गाते सिखा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज में फिल्म थी खूबसूरत। और अब बात करते हैं कुछ महिला सशक्तिकरण विकास की नई दिशा की, आज एक ऐसे विषय की जो महिलाओं के जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देना भी है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वह अपने पूरे परिवार को साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, व्यवसाय और कला हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन उनकी असली शुरुआत तब होती है जब महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले, उन्हें अपने फैसले लेने का खुद अधिकार मिले। और हमें ये समझना होगा कि महिलाओं का विकास बहुत ही ज़रूरी है और आगे महिला को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, समान अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी विकास की मजबूत नींव है। एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प हर कोई ले कि जहाँ हर महिला ये कह सके कि मेरी पहचान मेरे सपनों से है, मेरी उड़ान मेरी अपनों से है और मेरे फैसलों की आवाज़ मेरी अपनी है। याद रखिए, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है और समाज आगे बढ़ता है और देश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है। लीजिए लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है एक नया रिश्ता।

और अब बात करते हैं कुछ पहाड़ी बारिश में। बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो या होने वाली हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मौसम, लेकिन सड़क पर गाड़ी चलाते समय कहीं बारिश में कई सारे खतरे बन सकते हैं। गीली सड़क, टायरों की पकड़ कम हो जाती है और अचानक ब्रेक लगाने या तेज़ रफ्तार में मोड़ लेने पर गाड़ी फिसल सकती है। तो इस सभी चीज़ों के लिए बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार कम रखें, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास गाड़ी संभालने का समय हो। बारिश शुरू होने से पहले अपने टायरों की ग्रिप और हवा दबाव ज़रूर जांच लें। ख़राब या ज़्यादा घिसे हुए टायर गीली सड़क पर ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं, साथ ही ब्रेक, वाइपर, हेडलाइट, इंडिकेटर भी ठीक स्थिति में होने चाहिए। अगर सड़क पर पानी जमा हो तो तेज़ गति से उसमें गाड़ी ना उतारें, क्योंकि पानी की गहराई का अंदाज़ा ना हो तो रास्ते से बचना ही बेहतर है। और पानी में गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है और इंजन में पानी जमा होने का खतरा भी रहता है। और हाँ, बारिश के दौरान अचानक ब्रेक लगाने के बजाय धीरे धीरे ब्रेक लगाएं, और ख़ास तौर पर घबरा कर अचानक ब्रेक या तेज़ स्टीयरिंग ना करें। याद रखिए, बारिश में मंजिल तक पहुँचने की जल्दी से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित पहुँचना। थोड़ी सी सावधानी आपकी सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकती है। तो इस बारिश में गाड़ी चलाइए धीरे, संभल कर और सुरक्षित, क्योंकि सड़क पर सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये सुनिए आंचल फिल्म से गीत, फिल्म और जिसे गाया है आशा भोसले ने।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण

0: किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6 to 8%. He said this growth story is driven by 4 key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion every year.
4: We have been growing at a very sustained pace of 6 to 8% growth band, with moderate under control inflation, with very good balance sheet, and making sure that the entire country grows together. This is possible because of the four pillars of our growth story: investment in social, digital and physical infrastructure.
3: The Enforcement Directorate or ED has conducted searches at 10 premises in Rampur and Saharanpur in Uttar Pradesh and Delhi in connection with a money laundering investigation involving the Maulana Muhammad Ali Johar Trust and Muhammad Ali Johar University in Rampur. The ED said the searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It added the investigation relates to the alleged diversion of government contract funds through private contractors and their subsequent use, including for creation of assets for the university or the trust. The ED said that the searches were aimed at tracing the alleged proceeds of crime and recovering financial records, documents and digital evidence related to the diversion and utilization of government funds. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has today embarked on an official visit to Singapore with a ministerial delegation to participate in the fourth India-Singapore Ministerial Roundtable. The delegation comprised External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Union Minister of State for Electronics and IT, Jitin Prasad. Established in 2022, the India-Singapore Ministerial Roundtable is a key high-level economic mechanism between India and Singapore. It provides a platform to review progress and explore new areas of collaboration across six pillars, including advanced manufacturing, connectivity, digitalization, healthcare and medicine, skill development and sustainability. In Jammu and Kashmir, in view of the prevailing adverse weather conditions, Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has temporarily suspended fresh registration for the Sri Mata Vaishno Devi pilgrimage as a precautionary measure. The pilgrims who have already completed their registration and possess valid RFID cards are being permitted to proceed with the pilgrimage. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met his Singaporean counterpart Vivian Balakrishnan on his arrival in the country for the fourth India-Singapore Ministerial Roundtable being held tomorrow. In a social media post, Dr. Jayashankar informed that he later joined Mr. Balakrishnan in laying the foundation stone of the new Chancery Complex of the High Commission of India in Singapore. The minister expressed confidence that the complex will reflect the new era of India-Singapore comprehensive strategic partnership and further strengthen services for the Indian diaspora. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 315 points to 76,921, while the Nifty shed 97 points to 24,058 when reports last came in. In hockey, Indian men's team will face arch rivals Pakistan in a crucial Pool D encounter of the AFIH World Cup at the Wagener Hockey Stadium in Amstelveen, the Netherlands, today. The match will start at 3 p.m. Indian Standard Time. Both teams will battle for a place in the next round. India is currently on 3 points from two matches. On the other hand, Indian women's team produced a dominant 6-1 victory against South Africa in the second group stage match of the AFIH World Cup at the Wagener Hockey Stadium last evening. In the BWF Badminton World Championships, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krastho have advanced to the pre-quarterfinals of the mixed doubles event at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं और साथ ही हुए हैं 15 सेकेंड. अब वक्त है हमारे मनपसंदीदा सेगमेंट एक ही फिल्म से. और हमारी जो आज की जो फिल्म है वो 1985 में फिल्म बनी, जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित है और एक प्रसिद्ध बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल और राकेश रोशन

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज जो हमारी फिल्म है वो है आखिर क्यों, और इस फिल्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जो इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जे ओम प्रकाश ने किया था। और सबसे रोचक की बात ये है कि ये अभिनेत्री रीना रॉय के ससुर थे और बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के नाना थे। श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अगर मैं हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो निशा, जो कि स्मिता पाटिल हैं, एक अनाथ लड़की हैं जिसके जिसके रिश्तेदारों ने उन्हें गोद लिया है, और वह अपनी चचेरी बहन इंदु यानी टीना मुनिम के साथ पली बड़ी हैं। इंदु को अमीर और आकर्षक कबीर राकेश रोशन से प्यार हो जाता है, हालांकि कबीर को पारंपरिक स्वभाव वाली निशा पसंद आती है और वह उससे शादी कर लेता है। इंदु निराश हो जाती है। हंसमुख निशा कबीर के अन्य महिलाओं के साथ प्रेम संबंधों और इश्कबाजी के बारे में अनजान रहती है, और जिनमें वह व्यापारिक यात्राओं के बहाने घूमता रहता था।

श्रोताओं, निशा और कबीर के विवाह के बाद जब निशा गर्भावस्था अवस्था में आती है तो इंदु की माँ इंदु से निशा और कबीर के साथ रहने और निशा की देखभाल करने के लिए कहती है। जैसे जैसे निशा अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त हो जाती है वैसे इंदु और कबीर करीब आ जाते हैं। निशा एक बच्ची को जन्म देती है। अपने पति और चचेरे भाई के बीच के संबंध का पता चलते ही वह टूट जाती है और उनसे इस बारे में बात करती है। कबीर अपना संबंध खत्म करने से इनकार कर देता है और उसे इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए कहता है। निशा घर छोड़कर चली जाती है और अपनी बेटी की जिम्मेदारी नौकरानी को सौंप देती है। पुरुष प्रधान दुनिया में निशा को जीवित रहने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसकी दोस्ती आलोक, जो कि राजेश खन्ना है, उनसे हो जाती है। निशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखती है और एक सफल लेखिका बन जाती है। कबीर और इंदु की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है।

निशा और कबीर की बेटी जब शादी की उम्र में आ जाती है तो चिंतित कबीर को समझ नहीं आता कि वह इस रिश्ते का खर्च कैसे उठाएगा। लेकिन निशा कबीर की मदद करती है और उसे अपने प्रकाशन अधिकार बेचकर जीवन भर के लिए रॉयल्टी देने का वादा करती है। कबीर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है और गहरा पश्चाताप करता है। इस पर निशा कहती है कि वह आगे बढ़ चुकी है और नहीं चाहती कि उसकी बेटी को उसकी पहचान और उसकी माँ के दर्दनाक अंजाम का पता चले। आलोक निशा से मिलता है और उसे बताता है कि अब उनके रिश्ते को औपचारिक रूप देने का समय आ गया है। निशा पारंपरिक मूल्यों को मानते हुए इसका विरोध करती है। आलोक उससे पूछता है, आखिर क्यों? जब वह वैवाहिक समस्याओं से जूझ रही थी तब समाज ने उसे दोषी ठहराया और उसका साथ देने से इनकार कर दिया, तो अब समाज की चिंता क्यों?

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, और जो पहला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, और उनके साथ है पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। जो अगला संदेश है वो है नितेश देवांगन का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन। अगला संदेश है वो स्वर्ण सिंह का है, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और ये हम लिखकर भेज रहे हैं गाँव लोगर ठाकुरावाला से। अगला संदेश आर कुमार का, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, धर्मेंद्र छीपा में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार।

अगला जो संदेश है वो है संदीप मक्कड़ का, इनके साथ है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। सुधाकर जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ हैं डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और इनके अन्य परिवार के सदस्य। जो अगला संदेश है वो है संतोष काले, इनके साथ है तेजस, लोकेश और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से। जो अगला संदेश आया है वो आया है राजू माठे का और इनके साथ है गजानन माठे, ज्ञानेश्वर माठे, संजय माठे और ये हमको लिखकर भेज रहे हैं असल गांव बाजार, तहसील जलगांव, जामोद, महाराष्ट्र से। और जो साथ ही जो अगला संदेश है वो है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं दतरिंगी, दतरिंगी से। और जो अगला संदेश है वो है पीएस नाहकर, संतोष और मोहन निवारे, राजू माठे और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नरवेल, महाराष्ट्र से। श्रोताओं अगला जो संदेश है वो है हीरामणि वर्मा का और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा से। रामशरण विश्वकर्मा जी ने हमें संदेश भेजा है और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। अगला जो संदेश है वो है सुर संगम रेडियो श्रोता की तरफ से, विरम गाम गुजरात, अजीत भावसार और प्रमिला भावसार ने हमें लिखकर भेजा है। दिग्दर्शन गौर हमें संदेश भेज रहे हैं और इनके साथ है कविता गौर मेरठ कैन से। जो अगला संदेश है सुदर्शन मुखी का है और इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं और ये जो हमारे पास जो और जो बाकी लोगों का संदेश है श्रोताओं, हम उनको अपने अगले कार्यक्रम में इंक्लूड करेंगे। और फिलहाल आज के लिए श्रोताओं बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पे इस कार्यक्रम को लेकर, एक ही फिल्म से लेकिन फिल्म होगी दूसरी। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वफद की क्यादत कर रही हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा है कि पायदार इकतसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काले धन को जायज बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 10 जगहों पर छापे मारे हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में जारी FIH वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मुकाबले में भारत की मर्दों की टीम का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन एक वजारती वफद के साथ सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं, जहां वो चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। भारतीय वफद में वजीर खारजा डॉ जयशंकर, तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल, नीज इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के मरकजी वजीर ममलकत

0: जितिन प्रसाद भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। जनाब जयशंकर कल मुनाकिद होने वाली चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने बताया कि बाद में उन्होंने जनाब बालाकृष्णन के हमराह भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद भी रखा। वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि नया कॉम्प्लेक्स भारत और सिंगापुर के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के नए दौर की अक्कासी करेगा और सिंगापुर में मुकीम भारतीय बिरादरी के लिए खिदमात को मजीद बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और सिंगापुर के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत और उसत देने के तौर तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR फ्रेमवर्क के तहत आला सतह के राबते के सिलसिले में सिंगापुर के तीन रोजा दौरे पर रवाना हुए। तकरीबन 70 सीनियर कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल भारतीय कारोबारी वफद भी उनके हमराह है, जिसका मकसद भारत और सिंगापुर के इकतसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान जनाब गोयल कल चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ISMR भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आला सतह का वजारती प्लेटफॉर्म है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के साथ चौथी भारत सिंगापुर कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद होगी, जिसके बाद मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब गोयल के हमराह वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉ जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर तिजारत सिंगापुर के अपने हम मनसब और सिंगापुर के दिगर आला सतह के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। जनाब गोयल सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से भी मिलेंगे। इसके अलावा वो आलमी मालियाती टेक्नोलॉजी नेटवर्क YPO ग्लोबल और मिल्केन इंस्टीट्यूट के सीनियर नुमाइंदों के साथ कई मीटिंग करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की इक्तिसादी तरक्की को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है और मुल्क 6-8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह तरक्की 4 अहम सतूनों समाजी, डिजिटल और फिजिकल बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, सभी की शमूलियत वाली तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग पर खसूसी तवज्जो पर मरकूज है। आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान सरमायाकारी समिट 2026 से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि सरमायाकारी मुल्क की तरक्की के सफर का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से मुतालिक काले धन को जायज बनाए जाने की छानबीन के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर तलाशी ली है। ईडी ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई काले धन को जायज बनाए जाने की रोकथाम से मुतालिक 2002 के कानून के तहत अंजाम दी गई। उसने मजीद कहा कि यह छानबीन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट फंड को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट के जरिए मुबैना तौर पर दूसरे कामों में लगाए जाने से मुतालिक है। लखनऊ में कायम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसके उत्तर प्रदेश के साबिक काबीना वजीर आजम खान अपने कुंबे के अरकान और साथियों के साथ असल ट्रस्टी हैं, रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और एक पब्लिक स्कूल चलाता है। ईडी ने कहा है कि तलाशी की इन कार्रवाइयों का मकसद सरकारी फंड को दूसरे कामों में लगाए जाने से मुतालिक माली रिकॉर्ड्स, दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद हासिल करना था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के साबिक सदर आजहानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके यौम पैदाइश पर गुलाह अकीदत नजर किए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें सदर थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में आग लगने के वाकये के सबब होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने महलूकीन के कुम्मों से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। नायब सदर CP राधाकृष्णन आज उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो देहरादून की इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के 2025-27 बैच के तरबियत पाने वाले अफसरों से खिताब करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत में ऑस्ट्रिया के सफीर डॉक्टर रॉबर्ट ज़िसे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तरफैन ने जमहूरियत और चुनाव बंदोबस्त से मुताल्लिक भारत की बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए विजन के मुताबिक जमहूरी ताउन को मजबूत बनाने के अपने मुशतरक आज़म का यादा किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव बंदोबस्त और चुनावी अमले की तरबियत के शोबे में बाहमी ताउन को मजीद उसत देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकबिल में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम की खातिर महफूज बुनियादी ढांचे में इम्तिहान के मखसूस मराकज, साइबर सिक्योरिटी निजाम, इदारा जाती महारत और इम्तिहानात से मुतालिक कामकाज के लिए एक मुस्तकिल निजाम के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को इदारा जाती शक्ल दिए जाने की जरूरत का इरादा किया है। नीट UG 2026 पेपर लीक से वाबस्ता दरखास्तों की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने तालीम की वजारत के सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो इस बात की तफसील बयान करते हुए एक हलफनामा दाखिल करें कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। आज खेल के पांचवें दिन श्रीलंका की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 206 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि जीतने के लिए उसे 372 रन का निशाना मिला था। इस तरह भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इससे कबल भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन बनाए थे। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3 PM शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने नए भर्ती होने वाले दिफाई एहलकारों की तस्दीक के अमल को तेज करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल वजारत दिफा से मुंसलिक है, जो नए भर्ती होने वाले एहलकारों की असनाद और दस्तावेजात की तस्दीक करेगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को नोटिफाई किया है। इस पॉलिसी के तहत जमीन के मालिकान और तरक्याती इदारों की रजाकाराना शमूलियत के जरिए मनसूबाबंद शहरी तरक्की के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पायदार इकतसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG पेपर लीक के बाद इम्तिहान में इसलाहात से मुताल्लिक राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशात के नफाज के लिए मरकज से जवाब मांगा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वफ्द की क्यादत कर रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में जारी FIH वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मुकाबले में भारत की मर्दों की टीम का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Union Minister Ashwini Vaishnaw says government investing around $130 billion in public investment every year, resulting in sustained economic growth. Supreme Court seeks centre's response for implementing Radhakrishnan Committee's recommendations on exam reforms after NEET UG paper leak. Weather Department forecasts very heavy rainfall over parts of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. India defeats Sri Lanka in first test by 165 runs. Manav Suthar takes 6 wickets. And in men's hockey, India to take on arch rivals Pakistan in FIH World Cup at Wagener this afternoon. And now the news in detail. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6 to 8%. He said this growth story is driven by four key pillars: Investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh-Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said, investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion every year. The minister said, increased economic activity has enabled the country to maintain sustained growth, generate new employment opportunities, and ensure that the benefits of growth reach every section of society.
2: The investment story is a very important part of our entire growth journey. From a very minuscule investment that we used to make in our country, the public investment, today we have reached a level where we are making a sustained public investment of $130 billion every year. That much economic activity has helped our country grow in a very sustained manner, generate lots of new employment opportunities, and make sure that the benefits of growth reach every segment of the society.
1: Speaking on the occasion, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said the partnership between India and Japan is based on shared growth, technology and prosperity. He highlighted that Uttar Pradesh has now emerged as one of India's top three economies and has become a growth engine of the country's development. The Supreme Court today reiterated the need to institutionalize the National Testing Agency, NTA, with secure infrastructure, dedicated testing centers, cybersecurity systems, institutional expertise, and a permanent mechanism for examination-related operations to prevent future paper leaks. While hearing pleas concerning the NEET UG 2026 paper leak, the court directed the Union Secretary for the Ministry of Education to file an affidavit setting out the steps being taken to implement the Radhakrishnan Committee's recommendations. The court said its objective was to ensure that the country has a robust examination institution capable of retaining expertise and adapting to technological changes. Solicitor General appearing for the Centre and the NTA explained the safeguards currently in place for the preparation, printing, transportation and distribution of question papers. The K. Radhakrishnan Committee was constituted under the chairmanship of former ISRO chairman Dr. K. Radhakrishnan after the NEET UG 2024 paper leak controversy. It submitted its report to the Ministry of Education in October 2024, making 101 recommendations to overhaul the NTA and strengthen the security and integrity of public examinations. The Supreme Court today sought responses from the Centre and the National Commission for Protection of Child Rights on a PIL seeking the establishment of a national DNA and a biometric identification system for missing and rescued children to facilitate scientific identification, tracing and reunification with their families. The Apex Court issued notices to the Ministry of Home Affairs and the Commission. The petition sought directions to the centre and all the states and union territories to create a centralised system backed by statutory safeguards for DNA and biometric identification of the missing and rescued children. The Enforcement Directorate, ED, has conducted searches at 10 premises in Rampur and Saharanpur in Uttar Pradesh and Delhi in connection with a money laundering investigation involving the Maulana Muhammad Ali Johar Trust and Muhammad Ali Johar University in Rampur. The ED said the searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It added the investigation relates to the alleged diversion of government contract funds through private contractors and their subsequent use, including for creation of assets for the university or the trust. The Lucknow-based Maulana Muhammad Ali Johar Trust, of which former Uttar Pradesh Cabinet Minister Azam Khan is the main trustee along with the family members and associates, runs the Muhammad Ali Johar University and a public school in Rampur district. The ED said that the searches were aimed at tracing the alleged proceeds of crime and recovering financial records, documents and digital evidence related to the diversion and utilization of government funds. Vice President C.P. Radhakrishnan will begin a two-day visit to Uttarakhand today. He will address the trainee officers of the 2025-27 batch of the Indian Forest Service at the Indira Gandhi National Forest Academy in Dehradun. The Vice President will also be the chief guest at the closing ceremony of the second phase of the professional course for 2024 batch IAS officers at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in Mussoorie tomorrow. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000

0: किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है।

0: न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन

0: बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें पर्दे पर देखते ही दर्शक समझ जाते हैं कि कहानी अब कुछ खास होने वाली है। तो आज जिन कलाकार के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही कलाकार हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता हो, आवाज में ठहराव हो या फिर सिर्फ एक नज़र से सामने वाले को डरा देने वाला अंदाज, ऐसे कलाकारों में एक नाम बेहद खास है। वो है उत्पल दत्त।

श्रोताओं, आज की पीढ़ी उत्पल दत्त को खास तौर पर गोलमाल की भवानी शंकर के रूप में याद करती है। एक ऐसा किरदार जो अनुशासन, परंपरा और अपने बनाए नियमों को लेकर इतना सख्त है कि उसके सामने आधुनिक जमाने की छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन उत्पल दत्त सिर्फ गोलमाल के भवानी शंकर नहीं थे, वो अभिनेता थे, रंगमंच के बड़े कलाकार थे, निर्देशक थे, लेखक थे और सामाजिक राजनीतिक विचारों को अपने थिएटर के माध्यम से सामने रखने वाले बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनका सफर इतना लंबा और विविधता की तरह था, अगर उत्पल दत्त को सिर्फ एक कॉमेडी अभिनेता कह दिया जाए तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। उत्पल दत्त का जन्म 1929 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बरिसाल क्षेत्र में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है। बचपन से ही उनका झुकाव साहित्य की तरफ था, अभिनय और थिएटर की तरफ उनका रुझान जो है लगातार वो बढ़ता था। उनके समय में रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हुआ करता था, थिएटर सामाजिक और राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम हुआ करता था और वो एक बहुत ही शक्तिशाली रोल प्ले करता था। यहीं से उनके अभिनय शैली को एक मजबूत आधार भी मिला। उनकी आवाज, संवाद बोलने का तरीका और मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता धीरे धीरे उन्हें एक अलग पहचान देने लगी।

उत्पल दत्त का सबसे बड़ा योगदान भारतीय रंगमंच में माना जाता है। उन्होंने थिएटर को केवल मनोरंजक तक सीमित नहीं रखा था, उनके नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की झलक दिखाई देती थी। वो मानते थे कि कलाकार का समाज के प्रति भी एक दायित्व होता है और इसी सोच के कारण उनका थिएटर कई बार सत्ता व्यवस्था पर भी सवाल उठाने वाला हुआ होता था। उन्होंने कई नाटक भी लिखे, उनका निर्देशन भी किया, उनमें अभिनय भी किया, यानी कि मंच के पीछे लेखक निर्देशक भी वही और मंच पर सामने दिखाई देने वाले अभिनेता भी वही। यही बहुमुखी प्रतिभा आगे चलकर उनके फिल्मी करियर का सबसे बड़ा साधन बना, ताकत बना।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। और आज बात हो रही है एक बहुत ही मजे हुए कलाकार रंगकर्मी की, उत्पल दत्त नाम है जिनका। तो अब बात करते हैं उनकी फिल्मों में प्रवेश। अभी तक हमने सुना कि कैसे वो रंगमंच की दुनिया में छाए हुए थे, लेखन करते थे, अभिनय भी करते थे, निर्देशन भी करते थे। अब उत्पल दत्त ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं थी, उन्होंने बंगाली सिनेमा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 1950 के दशक में उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे वो बंगाली सिनेमा के महत्वपूर्ण कलाकारों में शामिल हो गए। लेकिन उनके करियर का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ आया 1960 और 70 के दशक में। उन्होंने सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे महान फिल्मकारों की फिल्मों में भी काम किया। उनका अभिनय, उनका अंदाज इतना जबरदस्त था कि वो एक तरफ गंभीर दिखते थे, एक तरफ बौद्धिक भूमिकाएं करते थे तो दूसरी तरफ कॉमेडी करते थे, व्यंग करते थे, और ये सभी चीज़ें बहुत ही प्रभावशाली लगती थी। भुवन शोम ने उनकी पहचान को बदल दिया। 1969 में ये मूवी आई थी और इस तरह से इस फिल्म में जो उनका अभिनय था उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला था। और खास बात यह थी कि जिस अभिनेता को आगे चलकर लोग हिंदी फिल्मों में हास्य और गंभीर भूमिकाओं के लिए याद करने वाले थे, उनके भीतर का गंभीर अभिनेता इस फिल्म में पूरी ताकत के साथ दिखाई दिया। 1970 के दशक में जो हिंदी भाषी दर्शक थे, जो हिंदी फिल्मों को देखा करते थे, उनके यहाँ पर फेमस हो गए उत्पल दत्त। उनकी शुरुआती हिंदी फिल्मों में साथ, हिंदुस्तानी, गुड्डी, बॉम्बे टॉकी, मेरे जीवन साथी, सबसे बड़ा सुख और कई बहुत सारी ऐसी फिल्म थी। लेकिन हिंदी सिनेमा ने उन्हें एक ही तरह की भूमिका में बांध कर नहीं रखा था। कभी वो पिता बनते तो कभी अधिकारी, कभी सख्त व्यक्ति, कभी खलनायक और कभी ऐसे किरदार में दिखाई देते जिसमें उनकी कॉमेडी का अंदाज सामने आया और उनके चेहरे के हाव भाव, आवाज का इस्तेमाल निर्देशक अलग अलग तरीके से करते थे। और गुड्डी और हिंदी दर्शकों में पहचान उनको इस फिल्म से मिली जो कि 1971 में आई थी, गुड्डी फिल्म, जिसमें उन्होंने निभाया था प्रोफेसर गुप्ता का किरदार।

अगर हिंदी फिल्मों की बात करें खास तौर पर, तो उत्पल दत्त की को याद किया जाता है। कई किरदार और फिल्में ऐसी हैं जैसे गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता, अमानुष में गंभीर भूमिका में, गोलमाल में भवानी शंकर का अंदाज, नरम गरम में उनका हास्य अंदाज, शौकीन, अंगूर, रंग बिरंगी, पसंद अपनी अपनी, किसी से ना कहना, लाखों की बात, जॉन जॉनी जनार्दन, साहेब, राम बलराम, द ग्रेट गैम्बलर, कई अन्य फिल्मों में उनके जो किरदार थे वो बहुत ही यादगार रहे। उनकी हिंदी फिल्मोग्राफी 1970 और 1980 के दशकों में विशेष रूप से काफ़ी सक्रिय रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में खुद को केवल एक कॉमेडी तक सीमित नहीं रखा। वो एक ऐसे चरित्र अभिनेता रहे जो कहानी की जरूरत के अनुसार अपना पूरा व्यक्तित्व बदल लिया करते थे। उत्पल दत्त को कई अभिनय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। भुवन शोम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा गोलमाल जैसी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर के हास्य अभिनेता वर्ग में भी सम्मान मिला। लेकिन उनके लिए पुरस्कार शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उनकी असली उपलब्धि थी कि उन्होंने थिएटर और सिनेमा दोनों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई।

हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और उन्होंने भी अपने संदेश भेजे हैं ईमेल के माध्यम से। तो छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा जुड़ रहे हैं अपने सभी परिवारी जन के साथ में। और दिग्दर्शन कविता गौर जुड़ रहे हैं मेरठ कैंट से, लिखते हैं कि एक ही कलाकार कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छू लेने वाले गाने बहुत ही सुकून दे रहे हैं। आपको उत्कृष्ट तथा उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वही धन्यवाद आपको भी। वडिंगखेड़ा से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं कार्यक्रम में। और सिंहभूम चाईबासा झारखंड से जुड़े हैं हमारे श्रोता शिवा गोप, प्रेम गोप, कविता, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपा जी। और साथ ही ये संदेश आया तुलसी मस्कीन जी का, और ये लिखते हैं, ये बिहारी कॉलोनी चाहतरा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक ही कलाकार में आज उत्पल दत्त के बारे में बहुत उम्दा जानकारी मिल रही है, नाइस गीत से आगाज आने वाला पल। जी बिल्कुल। और अगला संदेश अमर रमेश कुमार खत्री का है, चनेश्वर गोट कराची से, और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जुड़ रहे हैं, टकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अभिराज जुड़ रहे हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जुड़ रहे हैं, लिखते हैं कि आज एक ही कलाकार के अंतर्गत बहुत बढ़िया शानदार बेहतरीन बातें, रोचक किस्से सुनाए, नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही, हमें भी बेहतरीन जानकारी आपने दी जो हमारे ज्ञान में इजाफा करती हैं। तो मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह से हमारा भी हौसला अफजाई करते हैं। और अगला संदेश है दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से मस्कीन दादा का, और ये लिखते हैं कि उत्पल दत्त के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं काफी अच्छी लग रही हैं। हीरामणि वर्मा

दतरंगी भाटपारा भाटापारा से जुड़ रहे हैं, लिखते हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज उत्पल दत्त जी पर केंद्रित कार्यक्रम में उत्पल दत्त साहब जी की फिल्मी सफरनामा पर रोचक जानकारी के साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं। यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग, अशोक कुमार सहगल जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जुड़ रहे हैं, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई। फिल्म अमानुष का सॉन्ग सुना, बहुत ही अच्छा लगा। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता। तो भाई ये जो कार्यक्रम में हमारे साथ सभी श्रोता जुड़ रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कार्यक्रम में बात हो रही थी उत्पल दत्त के बारे में, और उत्पल दत्त एक ऐसा अभिनय एक ऐसे एक कलाकार थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, लेखक भी थे और सबसे बढ़कर एक बहुत ही शानदार रंगकर्मी थे। और आज के ज़माने के लोग उन्हें चाहे याद करें या ना करें, लेकिन गोलमाल फिल्म के भवानी शंकर के रूप में ज़रूर याद करते होंगे। तो चलिए चलते चलते एक और उन्हीं की फिल्म का गीत सुन लेते हैं।

इसी के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम में मुझे यानी विजेता को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। ये कार्यक्रम वो है जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड के उस गोल्डन एरा की, जहां पर ब्लैक एंड वाइट के काले और सफ़ेद रंग से सिनेमा पर इस तरह की कहानियां उतरती थीं जो आज तक दिलों में रह जाती हैं। और आज जिस तरह की फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर उस वक्त पर जो फिल्में हुआ करती थी वो सामाजिक परिदृश्यों पर आधारित फिल्में होती थीं, क्योंकि कहा भी जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। और वाकई वही आईना उस दौर की फिल्मों में ख़ास तौर से देखने को मिलता था, उस तरह की इमेज उन फिल्मों में देखने को मिलती थी जो वाकई में समाज में हो रहा होता था। तो आज ऐसा ही एक मुद्दा इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे अमीर और गरीब के बीच की प्रेम कहानियों पर आधारित फिल्मों की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां पर एक राज कपूर की फिल्म के बारे में बात करते हैं जो कि 1951 में आई थी। इस फिल्म में नरगिस साथ में थी और ये इंडियन सिनेमा की सबसे पहचान रखने वाली अमीर गरीब प्रेम कहानियों में से एक है। राज कपूर हालात की वजह से एक गरीब चोर पॉकेटमार बन जाते हैं, जबकि जो रीटा है जिन्होंने किरदार निभाया नरगिस जी ने, एक अमीर परिवार की से ताल्लुक रखती हैं और लॉयर बन जाती हैं। रीटा राज

कपूर के भोलेपन और उसकी सच्चाई से प्यार करती हैं और समाज के खिलाफ जाकर कोर्ट रूम में उनका केस लड़ती हैं। तो इस तरह की प्लॉटिंग पर ये फिल्म आधारित है, जहां पर दिखाया गया है कि अमीर और गरीब के बीच का ये प्यार है, ये किस तरह से परवान चढ़ता है।

1962 में एक फिल्म आई थी अमीरी गरीबी। इस तो फिल्म के नाम से ही अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर अमीर और गरीब के बारे में बात हो रही है। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक बेहद खूबसूरत और अलग तरह की अमीर गरीब प्रेम कहानी है। कहानी में देवानंद एक बेहद अमीर परिवार के इकलौते पोते हैं जिनका नाम है आनंद, और वो ये देखने के लिए कि क्या कोई उनसे उनके पैसे के बिना भी प्यार कर सकता है, अपना घर इसलिए छोड़ देते हैं, इस भाव से छोड़ देते हैं और एक गरीब बस्ती में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ उन्हें एक आम और बहुत भोली लड़की मिलती है, नाम है नूतन। उससे प्यार हो जाता है जो उन्हें एक आम गरीब लड़का समझकर मोहब्बत कर बैठती है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं, मतलब आनंद ले रहे हैं मैटनी मेलेडीज का। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट विजेता चतुर्वेदी, और आज बात हो रही है उस दौर की, उन फिल्मों की जहां पर अमीर और गरीब का प्यार दिखाया गया है, यानी कि समाज का वो मुद्दा जो कहीं ना कहीं आज भी है ही, लेकिन जो प्यार है ना, वो ना तो अमीर देखता है ना वो गरीब देखता है, वो बस प्यार देखता है, वो बस अट्रैक्शन देखता है। और ऐसी एक फिल्म थी 1960s में आई थी, नाम था बम्बई का बाबू। चोरी और अमीर घराने फिल्म में रोमांस के साथ एक गहरा ट्विस्ट था। देवानंद एक गरीब क्रिमिनल बनते हैं, चोर बनते हैं, जिनका नाम है बाबू, और हालत की वजह से वो चोर बन जाते हैं, गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और वो धोखे से एक अमीर परिवार का खोया हुआ बेटा बनकर उनके घर में रहते हैं, और वहाँ उस परिवार की बेटी माया से उन्हें प्यार हो जाता है, जहाँ पैसा और झूठ की दीवार उनके बीच में आ जाती है। तो 1960s की बम्बई का बाबू फिल्म का ये गाना आपके लिए है।

ब्लैक एंड व्हाइट के एरा में जिस तरह से फिल्मों को एस्टैब्लिश किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था, वो अपने आप में एक अलग तरह के अंदाज से, जो आज तक भी लोग जब उस फिल्म को, उन फिल्मों को देखने बैठते हैं, या फिर जिन्होंने देखी हुई होती है, वो सब कुछ ताज़ा हो उठता है। और ऐसी एक और फिल्म के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, फिल्म का नाम प्यासा। गुरुदत्त जी की इस महान फिल्म में प्यार और सामाजिक दर्जे का एक अलग ही रूप दिखाया गया था। कहानी है विजय की, जिसको रोल प्ले किया गुरुदत्त साहब ने, एक गरीब और नाकाम शायर हैं, और जिन्हें समाज ठुकरा देता है, और उनकी जो प्रेमिका है वो काफ़ी अमीर है, जिनका नाम है मीना, और ये किरदार निभाया माला सिन्हा ने, उन्हें छोड़ देती है उनकी नाकामयाबी की वजह से, और एक अमीर व्यक्ति से शादी कर लेती हैं। ऐसे में गरीब पर नेक दिल की गुलाबो नाम की महिला, जो किरदार निभाया वहीदा रहमान ने, विजय के संगीत को और शायरी को पसंद करती है, और उन्हें वो प्यार देती है और साथ ही साथ उनकी मदद भी करती है। ये है फिल्म प्यासा की कहानी।

0: अब बात करते हैं 1974 में आई एक बेहद सटीक फिल्म अमीर और गरीब। सबसे सटीक उदाहरण है ये अमीर गरीब की। अगर फिल्म प्रेम कहानी की अगर बात करें तो ये जो फिल्म है ये पूरी तरह से इसी थीम पर बनी है। इसमें देवानंद एक आम म्यूजिशियन बने हैं, बोनी नाम है, और जो रात में बगुला भगत बनकर अमीरों को लूट कर गरीबों की मदद करता है और उन्हें सोनी यानी कि हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है, और जो बाद में एक बेहद अमीर परिवार से मिल जाती है और दोनों की मोहब्बत में अमीर और गरीब की दीवार खड़ी हो जाती है।
1: मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, तो मेरे पास बिलियन पैसे हैं या करोड़ों या अरबों मेरे जेब में पड़े हुए हैं, वो कहाँ ले जाना है? वी शुड स्पेंड इट हियर फॉर गुड थिंग्स, आई अर्न्ड इट, माय एक्सपीरियंस इज माय वेल्थ।

मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई बिलियन पैसे हैं या करोड़ों या अरबों मेरे जेब में पड़े हुए हैं, वो कहाँ ले जाना है? वी शुड स्पेंड इट हियर फॉर गुड थिंग्स, आई हैव अर्न्ड इट, माय एक्सपीरियंस इज माय वेल्थ।

चलिए आपको फिर दोबारा से लिए चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एरा की तरफ। 1957 की एक बेहद कमाल की फिल्म नया दौर, दिलीप कुमार और वैजंती माला। फिल्म में अमीर मतलब वैजंती माला जो है वो एक अमीर जमींदार की टकरार और गरीब मजदूरों से होती है, जिसके बीच एक प्यारी सी प्रेम कहानी बनती है। कहानी है शंकर की, एक गरीब टांगे वाला है जो गांव के सभी गरीबों के हक के लिए लड़ता है, और गांव का एक अमीर जमींदार का बेटा वहां बस आकर मशीनें लगाना चाहता है जिससे गरीबों का रोजगार छीन सकता है। तो शंकर इस टकरार के बीच रजनी से प्यार कर बैठता है, और उनकी मोहब्बत जो है वो अमीर और गरीब के बीच का फासला दिखाती है। तो यही इस फिल्म की खूबसूरती है, यही इस फिल्म की ताकत है कि कैसे एक गरीब लड़का जो कि एक टांगा चलाता है, एक अमीर लड़की जो एक जमींदार की बेटी है, उनके बीच का जो प्यार है वो किस तरह से पनपता है और आगे बढ़ता है और सफल हो जाता है।

0: हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम हफ्जानी सेहत।
1: शुक्रिया
0: डॉक्टर साहब। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की, और सबसे पहले हम अपने सामेईन के लिए ये जानना चाहेंगे कि आखिर फिजियोथेरेपी है क्या?
1: जी, फिजियोथेरेपी एक्चुअली ऐसा है कि बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत अहम हिस्सा है फिजियोथेरेपी। कई बार गर्दन में दर्द होता है, घुटनों में होता है, कंधों में होता है, उसके बाद रिस्ट जो बोलते हैं कलाई उसमें होता है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए। और हम फिजियोथेरेपिस्ट एट द इंजरी साइट पे काम करते हैं। सपोज एक लोकल एरिया है, कमर में पेन है, आजकल बहुत आम है कमर का दर्द, सियाटिका, उसको किस हिसाब से ठीक किया जा सकता है विदाउट सर्जरी, विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, पोस्चर कैसे करेक्ट करना है, किस हिसाब से हम लोग को चलना है, उसको मेडिकल टर्म में गेट बोलते हैं, उसको हमको किस हिसाब से चलना है, उन सारी चीजों को हम लोग ये करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेंटिलेटर भी पेशेंट होता है, वहां भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। जी, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पैरालिटिक केस है, मान ले किसी को लकवा मार दे, लकवा में क्या है कि उसको फिजियोथेरेपिस्ट ही ठीक कर सकता है, उसके एक्सरसाइजेस होती है, कुछ मशीन लगते हैं, ये सारी चीजें। और हाँ, लकवा जिक्र किया मैंने, उसमें एक्सरसाइज है, उसमें देख हम ये देखते हैं कि किस कैटेगरी का है, उसमें फिर डिसाइड करते हैं किस कैटेगरी का है, तो कितना एक्सरसाइज देना है और कितना नहीं देना है।
0: तो फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट की बात करें या फिर दर्द की बात करें या फिर कोई अगर सर्जरी होती है तो क्या सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है?
1: खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ चोट लगे तो ही फिजियोथेरेपी लेंगे या दर्द हो रहा है। अब देखिए, बहुत कॉमन है आजकल घुटने चेंज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नी रिप्लेसमेंट। बहुत लोगों के कमर के हड्डी चेंज हो रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट, तो उस पे फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। उसमें हमें कुछ मसल्स पे फोकस करने पड़ते हैं कि कौन से मसल्स, थाई के मसल्स
0: जी,
1: उसके पीछे के मसल्स जो हैं, उस मसल्स को काफ बोलते हैं, पिंडली जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, उस मसल्स पे काम करते हैं। उसके बाद उसको हम करेक्ट कराते हैं कि कैसे खड़ा होना है, कैसे मूव करना है। सर्जरी के बाद अगर फिजियोथेरेपी ना हो तो कई बार पेशेंट से हिस्ट्री मिलता है हमें, मैंने 10 दिन 15 दिन लिया था फिजियोथेरेपी, उसके बाद छोड़ दिया मैंने, लेकिन उसके बाद उसको दिक्कतें बढ़ती है। घुटने चेंज की बात करें, नी रिप्लेसमेंट की बात, मिनिमम 3 मंथ तो लेना चाहिए
0: जी।
1: मेरा सजेशन आपके सामने से सबसे ये होगा, मिनिमम 3 मंथ्स लें, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है। फिर थोड़ा थोड़ा आप भी एक्सरसाइज करें तभी जाके ठीक होगा, क्योंकि उसके फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, बोन किस हिसाब का है, इम्प्लांट किस हिसाब का लगा, जो मेटल वगैरह लगते हैं उस पर काम करते हैं हम लोग।
0: बिल्कुल, आजकल आमतौर पर देखा जाता है कि कम उम्र में ही कमर का दर्द की बात करें या फिर गर्दन के दर्द की बात करें, मतलब ये काफी शिकायतें सामने आ रही हैं कम उम्र में।
1: कम उम्र में होने का 2-3 रीजन है। एक तो लैपटॉप पे हम लोग काम करते हैं, हमारा पोस्चर फॉरवर्डेड हो जाता है, मतलब आगे की तरफ कंधे हमारे झुक जाते हैं। दूसरा, मोबाइल बहुत अहम है
0: जी,
1: हम लोग बैठे भी हैं तो मोबाइल यूज कर रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तब भी हमारा गर्दन, और मोबाइल कई बार ऐसा होता है लोग घंटों घंटों यूज करते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है
0: जी, जी।
1: कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लैपटॉप का जरूरत है ही है, उसको यूज करना ही करना है, मोबाइल का यूज करना है, तो उसको थोड़ा मोबाइल को ऊपर की तरफ रखें ताकि आपकी गर्दन सीधा रहे
0: जी।
1: और लैपटॉप, आप सपोज आप जैसे चेयर पे बैठे हैं, आपको गर्दन झुका के लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा, बट आपको ऑलरेडी गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द हो ही रहा है, तो कैसे बचाएं? तो क्या करें, लैपटॉप का जो हाइट थोड़ा बढ़ा दें ताकि आपका पोस्चर करेक्ट रहे। इन चीजों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इसको खुद से करना चाहिए गर्दन पे, जैसे हम उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं, जैसे हाथ आगे दे दिया, गर्दन से धक्का दे रहे हैं साइड से, चारों तरफ से। और जब भी फिजियोथेरेपी लें, मेरा आपके जितने भी लिसनर हैं सबसे यही कहूंगा, किसी एक्सपर्ट से ही लें। आजकल बहुत आम हो रहा है कि जो वीडियोस बना देते हैं उन्हें खुद नहीं पता कि कितना एक्सरसाइज करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो लोग क्या कर फॉलो करते हैं, फिर बाद में आके हमारे पास आते हैं कि सर ये परेशानी हमारी बढ़ गई।
0: आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो अनट्रेन्ड पहलवान होते हैं उनके पास भी आम लोग चले जाते हैं कि शायद जल्दी ठीक हो जाएगा
1: जी,
0: लेकिन नतीजा जो सामने आता है वो बिल्कुल उलट होता है
1: सही बोल,
0: और ज्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।
1: कई बार ऐसा भी आया कि PIVD हो गया, स्लिप डिस्क जो बोलते हैं, वो हो जाता है पेशेंट को, हमने किया है ट्रीट, लेकिन उसके बाद फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक करना टाइम लग जाता है। फिर जिस भी इंसान के पास जाएं आप सब, पहले एक्सपर्ट देख लें कैसा है, उसके बाद जाएं, चाहे किसी से भी इलाज करवाएं।
0: बिल्कुल, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आजकल लैपटॉप पर हमें घंटों बैठकर काम करना पड़ता है, सिस्टम सामने होता है और हम कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी कमर पर इसका बुरा असर पड़ता है।
1: कमर पे भी पड़ता है,
0: बिल्कुल,
1: गर्दन पे पड़ता है, सबसे अधिक अगर पड़ता है कमर और गर्दन पे पड़ता है।
0: अगर जैसे दर्द तो होगा ही ऑब्वियसली, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए

0: अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप किस तरह का पोस्चर लें, या फिर कोई एक्सरसाइज ऐसी हो जो आप सजेस्ट कर सकें?
1: जी एग्जैक्टली वही मैं बताना चाह रहा था कि आपका जो चेयर का लेबल है वहां से शुरू करते हैं। चेयर का लेबल थोड़ा डाउन हो ताकि आपका गर्दन सीधा रहे। अगर चेयर का लेवल डाउन नहीं हो पा रहा है तो लैपटॉप का लेवल को थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, चाहे नीचे कुछ रख दें, किताब वगैरह या रजिस्टर वगैरह रख दें, कुछ इस तरह का रख दें कि वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए। उससे ये होगा कि आपके गर्दन का जो पोस्चर है वो थोड़ा सीधा रहेगा। दूसरा, अब रहा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, अपने हाथ को आगे रखना है, आगे की तरफ धक्का देना है, पीछे रखना है, पीछे की तरफ, ये स्ट्रेंथनिंग है।
0: हाथ जो है वो माथे पे रखना है
1: जी, चारों तरफ जैसे ऐसे रख दिया, फिर साइड की तरफ रख दिया, फिर दूसरे साइड की तरफ, फिर पीछे की तरफ, उससे धक्का देना है एक लेवल तक, उससे स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। क्या होता है कि एक पोस्चर में रहते रहते मसल का जो एरिया है उसका क्या होता है, वो वीक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि अपने चिन, जैसे ये ठुड्डी बोलते हैं, इस पे हाथ रख करके नीचे की तरफ दबाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एकदम जो पीछे वाला जो एरिया है उसको C1 C2 बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो C1 C2 एरिया में स्ट्रेंथ आएगा। ये बहुत जरूरी है। कुछ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है। उसके लिए क्या करें कि आप सिंपल एक लकड़ी वाले चेयर में जैसे आप बैठते हैं, चेयर में बैठ जाएं, दोनों हाथ को आप चेयर के दोनों साइड में ऐसे पकड़ लें जैसे मैं अभी बता रहा हूं। क्या करें कि गर्दन को एक एंगल बनाना है। अब मान ले सपोज राइट साइड में दाहिने साइड आपको अगर दर्द हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, टाइट फील हो रहा है, तो उसको स्ट्रेच सेल्फ कैसे कर सकते हैं, उसको क्या करें कि अपने राइट साइड में स्ट्रेच करना, तो राइट आई से लेफ्ट वाले नी की तरफ देखें, अपने आप छोटा सा एंगल बन जाता है, फिर गर्दन को धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उस तरफ ले जाएं, वो स्ट्रेच होगा। फिर उसके बाद अब लेफ्ट साइड भी करना है, तो उसी तरह से आपने लेफ्ट आई से राइट नी की तरफ देखें, तो एक सिंपल सा एंगल बन जाता है।
0: जी जी।
1: जब ऐसे होगा धीरे धीरे धीरे धीरे स्ट्रेच होगा, ये होगा पूरा। उसके बाद क्या, तो अपने हाथ से, एक हाथ से पीछे ले ऐसे करके,
0: यानी गर्दन पर हाथ,
1: हाँ,
0: रखें।
1: हाथ करके थोड़ी सी मोबिलाइज कर दें, इससे ये हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये तो रहा गर्दन की बात। अब आते हैं कमर पे।
0: जी,
1: कमर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। कमर पे क्या करना है कि चेयर आपका ऐसा हो कि ज्यादा सॉफ्ट ना हो, वो पोस्चर मेंटेन रहे। ऑलरेडी अगर जिसको कमर में दर्द है उसके बावजूद उसको बैठना है, तो उस केस में या तो वो बेल्ट यूज करें। कमर के लिए बेल्ट आती है हर साइज का, आपने मेडिकल शॉप में आप जाएंगे वो दे देगा आपको साइज के हिसाब से, वो यूज करें। और कोशिश करें कि कमर दर्द है उसके बावजूद आपको काम करना ही पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि लोग केयर नहीं करते इस चीज का, फिर बोलते हैं सर मेरा दर्द बढ़ गया। आप आधे घंटे बैठें, अगर इतना भी टाइम नहीं है कि बाहर निकल सकते, तो उसी जगह थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खड़े हो जाएं।
0: जी जी।
1: इससे ये होगा पोस्चर नॉर्मल होगा, फिर आप बैठें, फिर काम करते रहें।
0: डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये भी आजकल की अगर मैं बात करूं तो आजकल पहले बल्कि ऐसा सुना जाता था कि जब बुजुर्गियां जाती थी तो घुटनों में दर्द ज्यादा बढ़ जाता था और कैल्शियम की कमी अक्सर डॉक्टर्स बताते थे, लेकिन आजकल कम उम्र में ही घुटनों में दर्द ज्यादा रहता है, बच्चों के भी घुटनों में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, तो इसकी क्या वजह है और आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे?
1: देखिए एक्चुअली होता क्या है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं सैनुअल फ्लूड, बट इसको आम भाषा में लोग आजकल बोलते हैं उसको ग्रीस। वो ग्रीस कम हो जाता है घुटने का 45 ईयर के बाद। क्या होता है कि वो धीरे धीरे उस बनने का जो रेट है वो कम होने लगता है। फिर क्या होता है, नी जो हमारा घुटना जो है कई सारा बोन से बनता है, एक तो थाई की बोन है जिसको फीमर बोलते हैं, नीचे दो बोन है टीबिया फेबुला वो है, उसके बाद एक पटेला चक्की जैसी होती है
0: जी।
1: उसके बीच में लुब्रिकेंट होता है वही जो ग्रीस बोलते हैं
0: जी।
1: अब वो सपोज करिए वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ तो बोन आपस में टकरेंगे
0: जी।
1: जब टकराएंगे तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स टूटेंगे अंदर में। ये 45 ईयर के बाद स्टार्ट होता है। अभी मैं उस छोटे छोटे बच्चों पर भी आ रहा हूं, तो वहां क्या होता है कि फिर टकराता एक टाइम ऐसा होता है कि नी जाम हो जाता है, और फिर क्या होता है कि नी का शेप बिगड़ना शुरू हो जाता है, फिर वहां पर सर्जरी जरूरत पड़ जाती है।
0: ठीक है।
1: उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ही आपको लगे कि मेरे घुटने में दर्द होने लगता है, सीढ़ी चढ़ते में कभी कभी दर्द नहीं होता, उतरने में ज्यादा दर्द होता है, ये भी बात है, तो उसके लिए क्या करें, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी आपको, कुछ स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, जैसे इसको बोलते हैं थाई मसल्स को, पीछे की मसल्स को, एक छोटा सा सिंपल सा एक टॉवल ले लें, रोल करें
0: जी।
1: उस टॉवल के ऊपर घुटना रखें और लेट करके धीरे धीरे उसको दबाएं 10 सेकंड के लिए, फिर ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, फिर ढीला छोड़ें। उसके बाद दोनों पैर घुटने के बीच में एक पीलो रख दें, कंफर्टेबल पोजीशन, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा बहुत ज्यादा पतला ना हो, दोनों पैर से पीलो को दबाएं
0: जी,
1: ये स्ट्रेंथ होगी। फिर आपको क्या करना है, एक मेडिकल टर्म आता है SLR, सिंपल भाषा में उसको कहते हैं पैर उठाना है,
0: पैर उठाना,
1: हाँ, पैर सीधा करके उठाना है, तो उसका ध्यान रखना है कि 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, नॉट मोर देन 45, उससे थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। उससे ये आएगा कि स्ट्रेस आएगा, लोड आएगा आपके थाई मसल्स पर, उस पर लोड आएगा तो स्ट्रेंथ और

0: रहेगा, एक तो ये। दूसरी रही स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आप खुद से नहीं कर पाएंगे।
1: अच्छा
0: हाँ, स्ट्रेचिंग आप जैसे क्वाड्रिसेप्स जो ये बोलते हैं थाई मसल्स, फ्रंट वाली सामने वाली मसल्स, उसकी भी स्ट्रेचिंग है। उसके लिए मैं फिर भी बताता हूँ, अगर पीछे वाली मसल्स को करना है, एक लंबा सा चादर या टॉवेल या दुपट्टा कुछ भी लें, आप अपने एंकल के पीछे वहां लगाएं और घुटना सीधा रखें और लेट करके दोनों हाथ से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अपने तरफ खींचे, तो उससे यह होगा स्ट्रेच आएगा पूरा, जो आपका जो थाई मसल से पीछे वाला उसमें स्ट्रेच आएगा।
1: और उसको कितना ऊपर तक ले जाना है?
0: जितना आप ले जा सके, 90 डिग्री है मैक्सिमम।
1: ओके,
0: पीछे थाई का मसल जो है 90 डिग्री तक जाए तो इसका मतलब आपका मसल फिट है। अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइट है। अब उसके बाद रहा सामने वाले मसल्स, उसकी भी स्ट्रेचिंग है। उसके लिए क्या करें कि आप किसी वाल को पकड़ लें एक हाथ से, मान ले लेफ्ट को करना है तो राइट से वाल को पकड़ ले ताकि आप गिरे ना, उसको घुटना मोड़ के धीरे धीरे धीरे धीरे पीछे ले जाएं। लेकिन वो तभी हो पाएगा कि आपका घुटना कुछ भी मुड़ रहा है तब। अगर ऐसा नहीं कि घुटना पूरा टाइट हो गया तो वो आप नहीं कर पाएंगे, बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट फिजियो को आ जाए।
1: बिल्कुल, ये तो आपने बात बताई कि तकरीबन 45 साल के बाद आमतौर पर घुटनों में दर्द हो जाता है, सीढ़ियां उतरते हुए ज्यादा दर्द होता है। आमतौर पर हम देखते हैं अपने घरों में, जो हमारे घर में बच्चे होते हैं 13 साल 15 साल, उनके भी घुटनों में दर्द होता है। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो तो एक उनको अच्छी डाइट मिल रही है और खेल कूद रहे हैं, इतनी कम उम्र में भी ऐसा क्यों हो रहा है?
0: एक्चुअली देखिए, मसल्स को पानी की बहुत जरूरत होती है
1: जी।
0: पानी आप जब भी कम पिएंगे, बॉडी के किसी न किसी हिस्से में आपको क्रैम्स आएगा, टाइटनेस आएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं उसको
1: जी, जी।
0: जो ही वो कम होगा। बच्चे आजकल क्या करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, और सच्चाई है ये, रात में जगते हैं बहुत देर। अगर आप जगेंगे, बॉडी को एक रेस्ट चाहिए तो वो नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं बहुत ज्यादा, एक्सरसाइज कर नहीं रहे बच्चे, सच्चाई यही है। पहले जब हम लोग खेलते थे, बहुत ज्यादा खेलते थे, आज के बच्चे खेलते हैं क्या? बहुत ही कम,
1: बिल्कुल नहीं।
0: और जो खेलते हैं उसको नहीं होता है, जो प्लेयर्स की बात अगर करेंगे तो उसको नहीं होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, मसल वीक होता चला जाएगा। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। मैं जितना भी पेशेंट देखता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, सबको ये कहता हूँ ये बहुत जरूरी है, ये जरूर करो।
1: बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मसल्स जो है वो वीक भी हो जाते हैं आमतौर पर, अगर पानी कम पिया जा रहा है ऐसा। अगर हम यहाँ लेडीज की बात करें, शुरुआत करते हैं उनकी मसल्स से ही, वक्त के साथ साथ मसल्स में दर्द होता है, मांसपेशियों में, और कहीं ये कह सकते हैं नस पे नस भी चढ़ जाती है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी कितना काम करती है? और अगर वो घर पर हैं, फॉरेन डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं, तो ऐसे में वो क्या करें?
0: जी, एक्चुअली नस पे नस तो नहीं चढ़ती, मसल क्रैम्प होता है, जो हमने
1: अच्छा,
0: बताया कि नस पे नस चढ़ गया, ऐसा होता नहीं है कभी।
1: ये अच्छी बात ये, आपने बताई कि ऐसा कभी नहीं होता,
0: कभी नहीं होता मसल क्रैम्प्स। जो हम फीमेल्स में, मैं मेरी भी जो बहनें हैं, तो मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी करो, इससे बचते हैं लोग। एक ग्लास पानी भी लेना है तो, सिर्फ ये फीमेल्स का प्रॉब्लम नहीं, हर किसी का है, फला पानी दे दो एक गिलास, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो मसल टाइट होगा। अपने लिए वक्त निकालें, फीमेल्स से स्पेशली, आपके जितने लिसनर्स हैं फीमेल्स, उनसे ये कहूंगा कि अपने लिए दिन भर में 10 से 15 मिनट मिनिमम निकालें, तभी आप फिट रहेंगे, क्योंकि आपके बिना घर नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: और आप फिट हैं तो पूरा घर फिट है, वरना कोई फिट नहीं है। एक्सरसाइज करें, पेन नहीं है कुछ नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहीं नहीं जा पा रहे तो घर में भी करें, इतना भी टाइम अगर नहीं मिला, घर में भी 15 मिनट टाइम निकाल के किसी बालकोनी में खड़े हो जाएं, स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, नहीं हो तो किसी ट्रेनर को बुलाएं, एक्सपर्ट ट्रेनर को बुलाएं, फिजियो को बुलाएं, वीडियो बना लें, उसको फॉलो करें 15 दिन 20 दिन पर, फिर उसके बाद चेंज करें।
1: अगर गलत एक्सरसाइज हो जाती है तो बॉडी पर इसका क्या असर?
0: बहुत असर पड़ता है। अब जिसका घुटना मुड़ नहीं रहा, उसको जबरदस्ती खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोन टकराएगा, टूटेगा, फिर
1: बिल्कुल
0: फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए किसी एक्सपर्ट से ही करना चाहिए।
1: जो एक्सरसाइजेस आपने बताई वाकई बहुत काम की हैं। और दूसरी बात, जब खवातीन का जिक्र चल रहा है तो ये बात भी सामने आती है कि प्रेगनेंसी से पहले
0: जी
1: और प्रेगनेंसी के बाद
0: जी
1: किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए?
0: अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एक्सरसाइज नहीं करना है
1: जी,
0: क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स में फीमेल्स को दिक्कतें होती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, स्क्वाटिंग जरूर करें। जो घर में स्क्वाटिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, घर में जो पोछा लगाते हैं ना
1: जी,
0: बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल बहुत आम हो गया है कि डिलीवरी जो हुआ, बेबी हुआ, सिजेरिन हुआ, बहुत आम हो गया, उससे बचने के लिए स्क्वाटिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, आजकल देखने में यही आता है कि घर में मेड्स होती हैं, घर के काम करती हैं वो, और जो घर में है लेडी वो काम नहीं कर पा रही।
0: प्रेगनेंसी जो ही एडवांस करे, 3 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, फिजिकल एक्टिव

0: बढ़ा दें, वॉकिंग करें, झाड़ू पोछा अगर नहीं करना मन करता है लेकिन कभी कभी वो कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वैटिंग बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जो ही प्रेगनेंसी एडवांस करता है, टाइम आगे बढ़ता जाता है, तो एक लिगामेंट होता है कमर का, बॉडी का, तो वो लिगामेंट स्ट्रेच होना शुरू होता है धीरे धीरे धीरे धीरे। और गॉड से ये दिया हुआ, खुदा से, अल्लाह से दिया हुआ कि ये पोस्चर इस तरह का बनाया गया ताकि वो बैलेंस कर सके, कि स्टमक जो ही आगे की तरफ बढ़ेंगे और पीछे का जो बटक एरिया है वो बैलेंस कर सके, वो धीरे धीरे स्ट्रेच होता है। सपोज नॉर्मल डिलीवरी हो गया, उसके बाद में एक चरण किया कि एक्सरसाइज नहीं करना, क्यों करना, हो गया बस, वहां प्रॉब्लम शुरू होता है, वहां बैक पेन शुरू होना स्टार्ट होता है। उसके बाद सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है आपको, ज्यादा ना कर सकें तो मिनिमम 2 मंथ तो आप करें, उसके बाद फिर आप नॉर्मल रहेंगे।
1: आमतौर पर जब डिलीवरी हो गई उसके बाद जो लेडीज होती हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि या तो उनका वेट बढ़ जाता है, और अगर वेट नहीं भी बढ़ता तो जो पेट का पोर्शन है वो ज्यादा हो जाता है,
0: बहुत
1: तो
0: अच्छा, बहुत
1: इसके
0: अच्छा
1: लिए क्या
0: पूछा,
1: करें?
0: बहुत अच्छा पूछा आपने। वेट पुटअप जानते हैं कब करेगा, जब सिजरियन होगा, कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, उससे बढ़ते हैं और पूरी तरह से वेट पे हो जाते हैं, काम नहीं करना है, दर्द हो रहा है, और दर्द तो होना है थोड़ा सा, उसको ओवरकम करना है तभी आप फिट होंगे।
1: बिल्कुल
0: एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक बहुत जरूरी है, रनिंग कोई जरूरत नहीं, अगर आप नहीं कर पा रही है वॉक पे जरूर जाए, फिजिकल एक्टिविटी, घर के काम जरूर करें, इससे आपकी हेल्थ फिट रहेंगे।
1: पेट ज्यादा बढ़ जाता है
0: जी
1: तो क्या उसकी भी कोई फिजियोथेरेपी
0: जी
1: होती है?
0: उसकी भी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज। आप क्या करें, सीधे लेट जाएं, पहले ये ध्यान रहे अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो उस वक्त ना करें, कि ऑलरेडी उस वक्त पेन होता है, आप जो ही पीरियड्स खत्म हो आप सीधा लेट जाएं, बटक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, थाई को पीछे स्क्वीज करना बोलते हैं,
1: जी
0: वो करें। उसके बाद अगर कमर में दर्द नहीं है तब क्या करें कि दोनों घुटना को मोड़ें, अगर कमर में दर्द है तो ये वाला ना करें जो हम बताने जा रहे हैं,
1: जी
0: दोनों घुटना को मोड़ें, अपने चेस्ट की तरफ लें, उससे क्या होगा थोड़ा थोड़ा वो डाउन होगा।
1: जी
0: उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग होती है,
1: जी
0: आप
1: जी
0: खड़े हो जाएं, खड़े होने के बाद सपोज बाएं तरफ करना है, बाएं हाथ को ऊपर खड़ा कर लिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसमें भी ये शर्त है कि कमर में दर्द ना हो, स्ट्रेच किए लेफ्ट राइट साइड की तरफ, वो थोड़ा थोड़ा साइड का मसल स्ट्रेच होगा, दोनों
1: जी
0: साइड का, इस तरह से आप कर सकते हैं।
1: आमतौर पर जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि वजन आप कम कीजिए और घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा इससे।
0: जी
1: तो अगर वजन ज्यादा है और पेशेंट कम करने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उसका जो घुटनों का दर्द है, अब उसके लिए वो पेशेंट क्या
0: बट
1: करे?
0: बट ऐसे केस में आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका
1: जी
0: डाइट कैसा है। आजकल बहुत आम हो गया, बिना सादा रोटी शायद ही कोई खाता है, मैं बहुत पेशेंट को टोकता हूँ, क्या जरूरत है घी लगाने का, खाएं, लेकिन आपके बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैट है और फैट लेने की क्या जरूरत है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, डाइट को अपना चेंज करना पड़ेगा, पेट साफ होना बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए, ये डाइट लें कि आपका रफेज वाले सब्जी या इस तरह सी चीजें लें कि पेट साफ हो, एक तो वो, दूसरा आपका वेट बढ़ रहा है, घुटना में पेन हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपना वेट को कंट्रोल करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, इस पे ध्यान देना पड़ेगा और करना पड़ेगा।
1: घुटने में जैसे कोई भी उम्र में दर्द हो रहा है तो क्या सबके लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है या
0: जी
1: कहीं
0: मैं वही
1: कहीं
0: वही
1: जरूरी
0: बता
1: नहीं भी है?
0: जी देखिए कई बार होता है कि घुटना में चोट लगा,
1: जी
0: इसमें 2 कैटेगरी में बांटते हैं पेन को, एक्यूट एंड क्रोनिक। चोट लगा है, मान लिया सपोज देता हूँ, बहुत लोगों को चोट लगता है तुरंत क्या करता है गर्म पानी सेकाई करता
1: जी
0: है,
1: जी
0: गलत है, आपको 72 आवर्स तक आइसिंग करें, आइसिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है।
1: जी
0: बर्फ सिंपल कोई नहीं मिल रहा था, सब्जी वाली पॉलिथीन होती है ना, उसमें बर्फ के टुकड़े रख दें, जिस एरिया में अगर वो नील भी पड़ गया है, सिर्फ ये ध्यान रहे कि कट ना लगा हो, नील भी पड़ गया है दिन में 3 बार 10-10 मिनट तक, अगर ज्वाइंट में लगा है तो आइसिंग विथ मूवमेंट, वो घुटना में ही लगा है या शोल्डर में लगा, आइसिंग करें मूवमेंट कर दें, उससे पेन बढ़ेगा उस वक्त लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कंट्रोल होगा। 3 दिन तक ये करें, 3 दिन के बाद फिर आप क्या करें गर्म पानी से सेकाई करें, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं घुटने पे,
1: जी
0: घुटने में कई सारे पेन होते हैं, अब मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जो बताया गया, घुटने का दर्द है, जो सैंडिवल फ्लूइड ग्रीस जो कम है उसमें बोन बढ़ जाते हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस ठीक नहीं होते हैं, जिसको आप मैनेज करके रख सकते हैं, आप सामने वाले मसल्स को स्ट्रेंथ करें, थाई के पीछे वाले मसल्स को स्ट्रेंथ करें, स्ट्रेचिंग करें, आप उसको मेंटेन कर, हाँ आपका पेन बहुत बढ़ रहा है, आप चले जाइए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, 15-20 दिन उसे ट्रीटमेंट ले, 20 डेज आप काफी है, एक्सरसाइज ले लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए, एक्सरसाइज सीख लीजिए, फिर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए धीरे धीरे, अगर 15 मिनट भी रोज आप निकालेंगे तो फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर आपने भी सुना होगा, आपके पास पेशेंट आते होंगे और हमने खुद भी महसूस किया है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, अक्सर पैर मुड़ जाता है।

0: और या फिर ये कह सकते हैं कि पैर में चोट आ जाती है, जिसे अक्सर लोग कहते हैं मोच भी आ गई है, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, और उनके लिए फिजियोथेरेपी कितनी जरूरी है, और
1: जी
0: फौरी तौर पर वो क्या करें?
1: एंकल स्प्रेन बोलते हैं इसको।
0: जी
1: अब उसमें ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री। तो आम लोग तो ग्रेड नहीं अंदाज कर सकते हैं कैसे किस ग्रेड में है।
0: जी
1: आपको जो ही लगे
0: जी
1: एंकल अगर मुड़ गया, उसमें सबसे पहले आइसिंग
0: आइसिंग
1: आइसिंग
0: जरूर है
1: करें, आइसिंग
0: जी
1: करें और एंकल का मूवमेंट करें। चाहे ज्यादा कुछ ना कर पाए तो रोल रोल घुमाए भी एंकल को आइसिंग करने के बाद, पेन होगा। उसके बाद आप 2-3 दिन तक भी अगर करेंगे ना तो आप खड़े हो पाएंगे। और अगर आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, 1% भी अगर वेट नहीं दे पा रहे हैं अपने एंकल पे, पैर
0: जी
1: पे, तो
0: जी
1: फिर
0: जी
1: इमिडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप दे पा रहे हैं 1-2% भी दे पा रहे हैं, 2% भी आप दे पा रहे हैं, तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है खुद से भी। आइसिंग करें, उसके बाद मूवमेंट करें। 3 दिन के बाद गुनगुना पानी में क्या करें कि आज पहले बहुत आम था और बहुत अच्छी से लोग आजकल क्या इलेक्ट्रिक वाला यूज करते हैं, ये
0: जी
1: करते हैं,
0: जी
1: मैं जल्दी सजेस्ट नहीं करता हूँ। सबसे बेहतर है एक टब में गुनगुना पानी लें, जितना आपका पैर सह पा रहा है उस पानी में डिप कर दें। उसके बाद अब पैर अपना मूव करें, धीरे धीरे धीरे धीरे कंट्रोल हो
0: गर्म
1: जाएगा।
0: पानी लें टब
1: हाँ
0: में
1: हाँ
0: और इतना लें जितना आप सह पाएं,
1: जितना सह पाए।
0: और उसके बाद पैर उसमें
1: हाँ
0: डालकर
1: हाँ
0: थोड़ा सा मूवमेंट करें,
1: जी,
0: तो इससे काफी हद तक रिलैक्स मिल सकता
1: जी।
0: है।
1: और एक चीज बताता हूँ, आजकल क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं मेरे एरी के नीचे दर्द हो रहा है, उसको कालकेनेट स्पर बोलते हैं मेडिकल टर्म में। वो क्या होता है, हड्डी बढ़ जाता है, जो कमर जो पैर वाली हड्डी जो है वहां बढ़ जाता है, वो बहुत कॉमन हो रहा है। आई थिंक आप भी कभी महसूस कर रहे
0: बिल्कुल,
1: होंगे,
0: आपने सही कहा डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा सुनने में भी आया, बल्कि मैंने खुद भी अपने ऑफिस
1: महसूस कर।
0: में देखा है कि जैसे पैर है और पांचों उंगलियां हैं, जो अंगूठा है, अंगूठे के साइड में वो
1: जी
0: हड्डी बढ़ जाती है,
1: जी
0: तो पैर का शेप भी बिगड़
1: जी
0: जाता है। तो ऐसे में क्या
1: जी
0: उसमें
1: बता जी
0: फिजियोथेरेपी
1: एकदम
0: की?
1: एकदम। ये ज्यादातर फीमेल्स में होती है, हाई
0: अच्छा,
1: हील,
0: ये फीमेल्स में होती
1: हाई
0: है।
1: हील पहनने की वजह से। एंकल जो पीछे वाला है उसको तो रेस्ट में दे दिया, पूरा लोड किस पे गया, टोज पर गया।
0: टोज पर।
1: मोटा वाला जो उंगली है उसको टोज बोलते हैं, उस पर गया, तो लोड पड़ेगा तो बोन कहने के बढ़ेगा ना, वहां पेन होगा। एक तो वो
0: यानी ये कह सकते हैं कि अगर जो खवातीन हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, उनसे आप ये कहना चाहेंगे
1: जी
0: कि वो हील ना पहना करें।
1: नहीं पहने, लेकिन ओकेजनली पहने। आप पूरी तरह से मना तो मैं नहीं
0: लेकिन
1: करूंगा,
0: मैं
1: हमेशा के लिए मैं मना नहीं करूंगा, कभी कभी जरूर पहने, लेकिन बहुत लोग
0: जी
1: रेगुलर पहनते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: बचे
0: जी
1: उससे।
0: बिल्कुल
1: उससे
0: बिल्कुल।
1: बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, नी में प्रॉब्लम आ जाएगा, कमर में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि सिक्वेंस है।
0: और हील पहनने से कहीं ना कहीं पोस्चर भी चेंज हो
1: पोस्चर,
0: जाता
1: वही
0: है।
1: तो मैं बता रहा हूँ, वो पोस्चर चेंज हुआ, नी में लोड आएगा, आपका कमर में लोड आएगा, पूरे स्पाइन तक जाएगा। तो इसलिए पहने, आप जरूर पहने, लेकिन थोड़ा अवॉइड करें। अब आ रहे हैं, मैं हील की बात कर रहा था, हील
0: जी
1: के पीछे दर्द बहुत कॉमन आता है आजकल,
0: बिल्कुल।
1: और जो लोग आप सुन रहे होंगे शायद बहुत लोग एहसास भी कर रहे होंगे शायद ऐसा होता है। उसके लिए सिंपल है, 5 और 3 का रेशियो होता है, एक वो जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 5 मिनट गुनगुना पानी में रखें अपने हील को डिप करके जितना बर्दाश्त कर पाते हैं, फिर उसी वक्त नॉर्मल पानी में 3 मिनट, 5:3 का रेशियो, दिन में 2 बार कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए करें। एक तो वो, दूसरा अपने हील के पीछे हील पैड लगाएं, शू मॉडिफिकेशन कराएं। जूता अगर ज्यादा हार्ड है तो
0: जी
1: सॉफ्ट वाला यूज करें, शू मॉडिफिकेशन कराएं। वहां पर हील कुशनिंग मिलती है मेडिकल शॉप में, उसको बोलिएगा कि मेरे हील में दर्द हो रहा है, सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि लोग समझ पाए। दवाई दुकान में जाइएगा, अच्छे दुकान में, उसको बोलिएगा मेरे हील में दर्द हो रहा है, उसके लिए कुशनिंग दीजिए, तो
0: जी
1: वो दे देगा, हील पैड दे देगा। अपने शूज के अंदर डालें, उसको यूज करें। और मेल्स भी हील्स पहनते हैं,
0: जी जी
1: उनको
0: जी
1: भी कहूंगा कि ना पहने तो बेहतर है,
0: ये
1: पोस्चर
0: आपने
1: खराब
0: अच्छा
1: होता
0: कहा कि आप बैलेंस करते चल रहे।
1: है।
0: अगर हम अपने बुजुर्गों की बात करें,
1: जी
0: तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या उनको फिजियो की जरूरत पड़ सकती
1: जी
0: है?
1: पढ़ सकती
0: और
1: है
0: अगर फिजियो की जरूरत पड़ रही है, तो उनको आप क्या सजेस्ट
1: जी,
0: करेंगे?
1: उसको जिरियाट्रिक बोलते हैं, जो ओल्डर पेशेंट है।
0: जी
1: डाइट, पानी प्रॉपर लें, एक्सरसाइज जितना कर सकें थोड़ा थोड़ा ही, ना कर पाए तो वॉक करें। और एज बढ़ने के बाद ऑस्टियोपोरोटिक हो जाता है बोन, जो कमजोर होता है, हड्डियां जो कमजोर हो जाती है, बोलते हैं हड्डी कमजोर हो गया है, उसके लिए डाइट में थोड़ा कैल्शियम डाइट लें।
0: अच्छा
1: जैसे आप खाने पीने में, जिसमें आप अगर नेट पे भी सर्च मारेंगे कैल्शियम रिच फूड कौन सा है, तो उसमें मिलेगा, वो लें। उसका मेडिसिन का प्रॉपर केयर करें, अपने पोस्चर का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करवाएं, जैसे काफ मसल्स है, पिंडली,
0: जी
1: उसकी स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग जो है पीछे वाली मसल, थाई के पीछे, उसकी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीजें, पिलो दबा के, जो मैं बता रहा था, पिलो दबाना है तो मसल स्ट्रेंथ होगा, ये सारी चीजें करनी है।
0: डॉक्टर साहब, वक्त वैसे बहुत कम है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: फिर भी मैं ये सवाल छोटा सा जानना चाहूंगी आपसे
1: जी
0: कि आप कौन सी एक्सरसाइज के बारे में हमारे सामाइन को बताना चाहेंगे, जिससे वो चुस्त दुरुस्त रह सके?
1: सिंपल है, वॉक वॉक कर 10 से, हाँ

0: वॉकिंग में क्या है कि एकदम से कहते हैं क्या कि मैं एकदम से दौड़ जाऊं, मैं समझे नहीं. स्टार्टिंग में आप वॉक करें, मॉर्निंग में या इवनिंग में. हाँ, एक आजकल बहुत मिथ हो गया कि मैं सुबह ही दौड़ूंगा, सुबह ही चलूंगा तभी फिट रहूंगा, ऐसा नहीं है. अब मैं धूप में चलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इवनिंग में भी आप कर सकते हैं. अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, 9 बजे पहुंचना है, तो बंदा नहीं कर सकता
1: जी.
0: शाम में फ्री होते हैं, शाम में जाएं, बॉडी से पसीना निकलना चाहिए. थोड़ा सा पानी रखें साथ में, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, काफ की, हैम्स की, ये सब सारी. उसके बाद आप रनिंग पे स्टार्ट करें, तब जाके आप फिट रह सकते हैं. वरना आप लग्जरी लाइफ और जीते रहेंगे तो स्ट्रेचिंग.
1: एक और छोटा सा सवाल यहीं खड़ा हो रहा है कि एक्सरसाइज किस वक्त करें, खाने से पहले, बाद में, या कितने घंटे पहले, या कितने घंटे के बाद?
0: देखिए, ऐसा नहीं है कि आप खाने के बाद ही एक्सरसाइज करें या खाने से पहले ना करें. इस हिसाब कर लें कि आपको डाइजेशन अच्छे से हो गया हो, गैस ना बनने लगे. ऐसा नहीं कि यहाँ तक भरपेट भर लिया वो एक्सरसाइज करने जा रहा है, नहीं कर पाएंगे आप. लाइट हल्का रखें मॉर्निंग में. जैसे अब हम लोग जाते हैं रनिंग के लिए, कुछ ना कुछ तो लेते हैं ना, एक केला ले लिए, बिस्किट ले लिए, चना, चना बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, वो ले लिए, थोड़ा सा ले लिए, पेट पूरा ना भरे, हल्का सा लें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, उसके बाद आधे एक घंटे के बाद रिलैक्स हो जाएं, फिर ले खाना.
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सामईन फायदा उठाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.
2: वर्जिश और फिजियोथेरेपी, बेहतर सेहत की जमानत. अभी आप इस मौजू के तहत डॉक्टर शमीम अख्तर की गुफ्तगू सुन रहे थे. आपसे बातचीत कर रही थी मोहतरमा रेशमा फारूकी. तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम हिफ्जान सेहत. और अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम खत्म करने की इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听扎吉辛格和吉特啊辛格唱的歌曲。

0: 印度德里广播天台听众朋友们，请收听加克吉信歌唱的歌曲。
1: Admi bulbula hai pani ka, aur pani ki behti sathe par tootta bhi hai, doobta bhi hai, phir ubharta hai, phir se behta hai. Na samandar nigal saka isko, na tawareekh tod paayi hai.वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुल

印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的女士歌手苏尼迪·乔汉唱的歌曲，请各位欣赏。

印度的里广播电台听众朋友们，请收听获得36项印度电影界最佳女配音歌手阿卡亚格尼唱的歌曲，请各位欣赏。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आज हम चर्चा करेंगे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की। इसके अलावा बात होगी स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 2025 यानी कि अर्जुन अवार्ड और तमाम जो अवार्ड दिए जाते हैं खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए, प्रशिक्षकों को उनके शानदार योगदान के लिए। इसके अलावा चर्चा होगी विश्व कप हॉकी की, जहां भारत को अब जो मुकाबला है पाकिस्तान के साथ उसका होना है और भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करेगी उम्मीद की जा रही है जिस तरह की परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा बात अन्य खेलों की भी होगी, डोरंट कप की होगी, सुब्रतो कप की होगी। और इसके अलावा सबसे एक खुशखबरी ये देनी है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ 165 रन से पहला मुकाबला जीत लिया है। दो टेस्ट मैचों की सीरीज है और भारत ने 1-0 से शानदार शुरुआत की है और भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है इसलिए ये जीत काफी मायने रखती है। बहरहाल इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ हैं प्रतीक आनंद। स्वागत है प्रतीक
2: जी। नमस्कार।
1: बिल्कुल। और प्रतीक क्यों ना शुरुआत हम विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप से करें, जहां जो कि दिल्ली के आईजी स्टेडियम में चल रही है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी खास तौर पर वहां मौजूद हैं और खिलाड़ियों से खास बातचीत और खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा और क्या चल रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पे, इस पे पेश है ये रिपोर्ट।

0: maintain my physique and keep moving faster. So yeah.
1: It's not actually much because even when I used to play with Ashwini Didi, a lot of my movement was front based. But still, I think mixed requires a lot more of that. Constantly doing it and being consistent in doing that is, I think, what has changed. Because since Dhruv needs to cover most of the court, and he does cover most of the court, my job mainly is to be more consistent in moving forward, and I think that's the change that has come in.
0: Yeah. Of course, like, we are just trying to, you know, not be happy when we are winning, and when we lose also we have to be neutral. So we are just trying to progress those things, like how we have to be stable, you know. It's not like up and down, like there shouldn't be a graph which, you know, shows there's too much of
1: again.
0: So we're just trying to, like, sometimes it used to be, because, but now it's been going well. Like, we learned this year a lot, like how we have to maintain it, like.
1: Yeah, I mean, we do have our own share of bad days, but at the end, it's really important to get back together. We sit and we watch a lot of matches together, which really helps us figure out actually what went wrong.
2: पुरुष युगल में भारत की सात्विक रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में वॉकओवर मिला। अब ये जोड़ी अंतिम 16 यानी प्री क्वार्टर में प्रवेश कर गई है। उनके प्रतिद्वंद्वी स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और एडम प्रिंगल मुकाबले से हट गए। दरअसल अलेक्जेंडर के टखने में चोट लग गई है। हालांकि पुरुष युगल में अन्य भारतीय जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन एम्स करुणन को कोरिया के कैंग और डी की जोड़ी ने 21-17 21-14 से पराजित कर दिया। पहले सेट में अर्जुन हरिहरन ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरे सेट में कड़े मुकाबले के बीच मैच गंवाना पड़ा। आज ही स्टेडियम में मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी से बातचीत में अर्जुन ने कहा,
3: मैच कैसा रहा, कहां लेक हुआ, क्या रीड किया, क्या लर्न किया, सब बताओ।
4: आई थिंक हम लोग स्टार्ट अच्छा ही किया था मैच से पहले। हमारा टैक्टिक ऐसा था कि कोरियंस के साथ, यू नो, दे आर वेरी गुड एट डिफेंस, तो मैच लंबा होने वाला था एंड हम लोग मेंटली प्रिपेयर था लंबा मैच खेलने के लिए। एंड आई थिंक 15 ऑल तक वी एक्सिक्यूटेड आवर टैक्टिक प्रीटी वेल। हियर एंड देयर मिस्टेक्स हो रहा था, बट हम लोग कवर भी कर रहा था 15 ऑल तक लेके आया मैच को। बट फिर उधर से जो आई थिंक 2-3 पॉइंट्स कंटिन्यूस चला गया, आई थिंक दैट कॉस्ट अस द मैच, बिकॉज 18-15 से एक्सपीरियंस पेयर है वो लोग, तो एक एक्सपीरियंस पेयर से 18-15 डाउन से टू ब्रिंग अप द मैच और क्लोज द मैच इज सर्टिफिक डिफिकल्ट टास्क। आई थिंक 15 ऑल से इफ वी वुड हैव नॉट मेड दोस मिस्टेक्स एंड प्रॉब्ली देन फर्स्ट सेट जीत जाता, तो आई थिंक मैच कुड हैव गॉन टू आइदर साइड, बिकॉज सेकेंड सेट से स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम द स्लोअर साइड थोड़ा और डिफिकल्ट टास्क था, वी न्यू इट, बिकॉज स्लोअर साइड से एस्पेशली हमारा टैक्टिक ऐसा है कि हरी जब पीछे खेलता है उसका स्मैश जनरली फिनिश होता है, बट जब स्लोअर साइड से खेलता है इट्स यूजली अ डिफिकल्ट टास्क टू फिनिश दोस विद अ कोरियन डिफेंस लाइक दे हैव। तो सेकेंड सेट में भी, यू नो, स्टार्टिंग से ही थोड़ा डाउन हो गया था।
3: इस बार चैंपियनशिप को कितना नंबर दोगे, कितना अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट है, कैसे देखते हैं?
4: परफॉर्मेंस देखा तो ऑब्वियसली वी आर नॉट हैप्पी विद, आई मीन वी ऑब्वियसली वांट टू गो डीप इनटू अ टूर्नामेंट, बट अभी देखा तो वी न्यू इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क एंड वी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अभी देखा दो गेम ही खेला है, बट इफ यू सी द मिनट्स वी प्लेड इट वाज क्लोज टू 45 मिनट्स। यूजुअली तीन गेम यूजुअली 45 मिनट्स तक जाता है, तो दैट क्लियरली सेज कि लंबा रैलीज हो रहा था। आई थिंक पॉइंट्स इफ वी कुड हैव स्कोर्ड देम।
2: महिला एकल में हालांकि उन्नति हुड्डा की हार से एक झटका लगा एमली के खिलाफ। तीन गेमों के मुकाबले में 21-11, 9-21, 21-23 से उन्नति को नजदीकी हार झेलनी पड़ी। एक समय उन्नति जीत के करीब लग रही थी, हालांकि हार के बावजूद उन्नति को लगता है इस विश्व चैंपियनशिप में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला।
3: कैसा रहा मैच, कहां लेक हुआ, क्या लगता है, क्या सीखा, बताओ।
5: बहुत अच्छा मैच था, आई प्लेड रियली गुड, मैंने अपना पूरा दिया, बट लास्ट में मैं अपने साइड मैच को कन्वर्ट नहीं कर पाई। दो बारी एडवांटेजेस भी आए, मैच पॉइंट भी आया, बट दैट्स हाउ बैडमिंटन एनी गेम इट इज। बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई पुश्ड माई सेल्फ एंड पुश्ड हर ऑल्सो, इट वॉज अ रियली गुड मैच एंड आई एम हैप्पी द वे आई प्लेड ऑन द नेट। आई डिड फ्यू गुड टैप्स एंड ड्रिबल्स ऑल्सो, सो इट हैज रियली, माई नेट हैज रियली इम्प्रूव्ड फ्रॉम माई पास। सो बट आई फील लाइक हूसोएवर वॉज कमांडिंग ऑन द नेट वॉज गेटिंग अ रियली गुड चांस टू अटैक एंड लाइक आइदर मी और शी, लाइक बोथ ऑफ अस वर गेटिंग पॉइंट्स फ्रॉम अटैक्स। Yeah, I feel like in between, I just 2-3 points, I did few silly mistakes from my hand that shouldn't have been done, because wo world number 13 hai, so I think uski taraf se silly mistakes beech mein critical moments pe bahut kam hue, and whenever she had the chance she just took it. So I should learn this from.
2: Ji haan bilkul, jab mauka mila Michelle Lee ko to unhone isko bunaya aur muqabla jab match point tak chala gaya, kadi takkar di. Terry Wing varita ke khiladi hain aur unnati 45vi varita ke hain, lekin unhone dikhaya ki shandar pradarshan karne ki wo kshamta rakhti hain. Behrhal abhi bhi muqable chal rahe hain purush ekal mein, Lakshya Sen abhi ye muqabla khel rahe hain America ke Gary Ten ke khilaf, aur ye muqabla do abhi do pehla game 21-19 से लक्ष्य ने जीत लिया था, लेकिन उसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्हें कड़ी टक्कर हुई और 19-21 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अभी निर्णायक गेम चल रहा है. बहरहाल इस चैंपियनशिप में कई उलटफेर भी देखने को मिल रहे हैं, और आज का जो उलटफेर है वो ये है कि ऑल इंग्लैंड चैंपियन लिन चू यू बाहर हो गए हैं. इस साल उन्होंने इंडिया ओपन जीता था, लेकिन यहाँ विश्व चैंपियनशिप में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. प्रतीक, क्यों ना बात श्रीलंका में मिली भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर करते हैं. एक शानदार जीत, शानदार शुरुआत सीरीज की.
6: जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त 2026 तक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 165 रनों से हराया और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली. भारत ने पहली पारी में 462 और दूसरी पारी में 193 रन बनाए, जबकि श्रीलंका की टीम दोनों पारियों में 284 और 206 रन ही बना सकी. चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 84 रन था. उस जीत के लिए 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दिन 288 रनों के बनाने थे. क्रीज पर कप्तान धनंजय डी सिल्वा 31 और सोनल दिनुषा 25 रन बनाकर मौजूद थे. भारत को 6 विकेट की जरूरत थी. पांचवें दिन श्रीलंका ने शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों का मजबूती से सामना किया. धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुषा ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. धनंजय ने 151 गेंदों पर 59 रन बनाए, जबकि दिनुषा ने 128 गेंदों पर 84 रन की जुझारू पारी खेली. दिनुषा ने 8 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन धनंजय डी सिल्वा का विकेट गिरते ही मैच का रुख फिर भारत की ओर मुड़ गया. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाया. युवा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथार ने निर्णायक भूमिका निभाई. उन्होंने दूसरी पारी में 55 रन देकर 6 विकेट लिए. पहली पारी में भी 4 विकेट मिलाकर सुधार ने पूरे मैच में 10 विकेट हासिल किए. इस शानदार प्रदर्शन से भारत की जीत सुनिश्चित कर दी. जीत के बाद भारत के उप कप्तान केएल राहुल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं.
7: It's a sigh of relief. We're just happy, and every test match victory is special. We're coming back to Sri Lanka after a long time, so a lot of the guys haven't been here, and so it's a great start to the tour. I think we ticked most of the boxes, and we did most of the things right that we spoke about before the test match, and the way we prepared, I think we could put that into practice and put that into the game. So that was really good to see, and I think this victory will obviously give a sense of happiness that we did the right things.
2: जी बिल्कुल, और खिलाड़ियों का प्रदर्शन होता है जो उन्हें पुरस्कारों की श्रेणी में लाता है, उनका सम्मान होता है, अभिनंदन होता है. और अब जो खेल परिदृश्य है वहाँ खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन है, काफ़ी अभिनंदन किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनको काफ़ी शाबाशियाँ मिलती हैं, प्रोत्साहन मिलता है. और खेल स्पोर्ट्स जो ये स्पोर्ट्स अवार्ड है वो भी इसी का एक परंपरा है, खिलाड़ियों की सम्मान की. और 2025 के खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स अवार्ड है उन पर ये खास रिपोर्ट, जिनमें 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है. देश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है. इनमें 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है. अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में ट्रैक एंड फील्ड से तेजस्विन शंकर और प्रियंका गोस्वामी, शतरंज से विद्युत गुजराती और विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख, बैडमिंटन से त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, हॉकी से राजकुमार पाल और लाल रेमसियामी, मुक्केबाजी से नरेंद्र, निशानेबाजी से धनुष श्रीकांत और अखिल श्योरान, कबड्डी से सुरजीत और पूजा, पैराशूटिंग से रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा एथलेटिक्स से एकता भयान, रोइंग से अरविंद सिंह और एथलेटिक्स से मोहम्मद अजमल शामिल हैं। पैदल चाल में भारत का लगातार

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ya usikilizaji mema ni kitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umang Zen, nambari ya simu ni 8765 98 6 7 0.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho,
2: aap kisanon se kya kehna chahoge ki ye 238 ki jagah kaun si kism hai jisko aap replace karke laga sakte hain, jiska production ye matlab kya lalach kya hai kisan ko, kya prem hai?
3: Dekhiye aisa hai, jaisa aap jaan rahe hain, ye variety 2009 mein introduce kari gayi aur jab se lekar ke is variety mein chini udyog aur hamare bhartiya kisan khas taur se hamare uttar pradesh se dusre staton mein variety pahunch gayi. महाराष्ट्र तक लोगों ने, किसानों ने लाइक किया इसको. लेकिन जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया था, इसमें एक बीमारी रेड रॉट है, जो चीज़ आती है लॉन्ग टाइम तक, पर उसके बाद में उसमें कुछ ना कुछ खामियां आ जाती हैं. और आज की तारीख में इसमें पिथ फॉर्मेशन जो है, हम किसानों को एडवाइज इसलिए करते हैं कि इसमें पिथ ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर खोखलापन जिसे कहते हैं
2: जी,
3: वो ज़्यादा आने लगा है. और बीमारियों का अटैक, चाहे वो टॉप बोरर है या कोई से भी बोरर हैं, रूट बोरर है और अन्य बीमारी, जैसे हमने डिजीज के बारे में बताया, पोका बोइंग है, रेड रोट है, इस बीमारी के ज़्यादा आते हैं. तो किसान को खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, इस पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. अभी इंट्रोड्यूस जो वैरायटी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया रोगों के बारे में, हमारे शाहजहानपुर संस्थान से एक वेराइटी रिलीज हुई है COSE 18231, किसानों के खेतों पर पहुँच गई है. काफ़ी अच्छी वेराइटी जो हो गई है. और उसके साथ एक वैरायटी है COLK 16202
2: जी,
3: वो वैरायटी उभर के आई है और वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं, और दो तीन वैरायटी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होंगी. तो तहत हमारा उद्देश्य सलाह किसानों की, वैज्ञानिकों की ये रहती है कि किसान का नुकसान कम हो और बीमारियों से निजात मिले, धीरे धीरे से वैरायटी को कम करते जाएं और दूसरी वैरायटियों को बढ़ाते जाएं.
2: बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, कई बार एक पिछले कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो किसान ना डरा हुआ होता है हमेशा. फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे. हेलो हेलो हेलो,
4: नमस्कार सर.
2: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं विकास बोल रहा जी, जिला बागपत यूपी से जी.
2: विकास भाई बताइए, क्या सवाल है आपका?
4: सवाल ये है सर, ये जो अब गन्ने की जो फसल है उसमें एक तो पोका पॉइंट का सर सर जी,
2: हाँ जी,
4: और एक उसमें जी माइट जैसे नीचे व्हाइट व्हाइट जैसे सिलाई नुमा सी हो जावे, पत्ती पे ऐसे चमक रहा और उसमें ब्लैक ब्लैक भी है जी, धब्बे से नीचे पत्ती के,
2: पत्ती के निचले हिस्से पे.
4: हाँ जी.
2: अच्छा,
4: तो मतलब सर क्या किस दवाई का स्प्रे करे जो ठीक हो जावे?
2: डॉक्टर सुजीत बताओ जी.
5: विकास जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत बोल रहा हूँ. जो आपके गन्ने के किस्म में दिखाई दे रहा है, तो पहला तो पोका बोइंग है. देखो, पोका बोइंग आने का मुख्य कारण, मैं किसान भाइयों की अभी दवा डॉक्टर सिरोही जी ने बता दिया, इसके कारण भी थोड़ा आप जान लो और थोड़े लक्षण भी जान लो. पोका बोइंग के जो आने का मुख्य कारण होता है, जैसे आज बारिश है या कल धूप है, तो इस तरह से बारिश और धूप के कॉम्बिनेशन की वजह से टेम्परेचर, तापमान और आर्द्रता के संयोजन से ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है. लेकिन जब बारिश लगातार होने लगती है, मूसलाधार बारिश होती है और कई दिनों तक होती है, तो इस बारिश, इस बीमारी का, इस रोग का प्रभाव धीरे धीरे कम भी हो सकता है. लेकिन इस समय बीमारी ज़्यादा फैल रही है, तो जो डॉक्टर सिरोही साहब ने बताया दवाई, उसका भी इस्तेमाल करके.
2: डॉक्टर साहब आप भी बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए, नोट कर लेंगे.
5: तो मैं एक फिर से दवा का रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुख्य बीमारी है और सभी किसान भाई इससे थोड़ा सा परेशान है फसल को लेके. तो कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का जो आता है, इसका जो डोज है 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, आप पानी उतना ही मात्रा में पानी मिला के इसका स्प्रे कर सकते हैं. विकल्प के रूप में कार्बेंडाजिम 50% WP के रूप में आता है, इसका भी उतना ही मात्रा में यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप मैंकोजिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यद्यपि जितने भी फफूंद नाशक हैं सभी पोका बोइंग पे अच्छी तरह से प्रभावी होते हैं, लेकिन जो सस्ता हो, इकोनॉमिक हो, उस फफूंद नाशक का प्रयोग करके पोका बोइंग जैसे बीमारी को खत्म किया जा सकता है. विकास जी, दूसरा एक प्रश्न आपका था कि पत्तियों पे माइट जैसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से मैं बता दूं, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हिस्सा है, उस समय चाहे वो 238 का किस्म हो या कोई भी गन्ना किस्म हो, सभी में मकड़ी के आप प्रकोप उसमें दिखाई दे रहे हैं।
4: हाँ जी, मकड़ी तो बहुत ज्यादा है।

0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा हूँ। और मकड़ी के जो लीफ सरफेस होता है, पत्ती के ऊपरी ऊपरी वाले भाग पे लाइन से कम 6 की पंक्तियों में सफ़ेद सफ़ेद रंग के, पिंक कलर के, कहीं कहीं वो जब पक जाते हैं तो वो काले रंग के भी, ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं।
1: हाँ सर, पत्ती बिल्कुल काली हो रही,
0: हाँ
1: मतलब
0: जी, तो
1: हाँ जी
0: इस तरह से अगर मकड़ी है तो या तो मूसलाधार बारिश होगा तो ये धीरे धीरे उसके कुकून मकड़ी के ख़त्म हो जाते हैं, या उसके प्रभाव इसमें ज़्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है तो कोई भी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे इमिडाक्लोरपीड का भी आप इस्तेमाल स्प्रे कर सकते हैं, जो कि 17.8 SL में आता है, 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दें। इसके अलावा क्लोरपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का जो मिक्सचर आता है, इसका भी इस्तेमाल आप 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं, या प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन का भी 40% 44% का जो आता है इसका भी कर सकते हैं।
1: सर, जैसे कोपर ऑक्सीक्लोराइड का बताया आपने पोका पॉइंट में,
0: हाँ जी,
1: तो उसके साथ ही मिला सके हैं सर ये
0: मैं आपके प्रश्नों
1: एमिडा
0: का उत्तर,
1: वगैरह?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से सारे लाभान्वित होंगे। कॉपरॉक्सीक्लोराइड के साथ कोई भी अन्य रसायनों का मिक्सचर नहीं किया जाता है। अगर कॉपरॉक्सीक्लोराइड के विकल्प के रूप में जो दवाओं का इस्तेमाल करने का नाम बताया, कार्बेंडाजिम 50% W का पोकाबोइन के लिए नियंत्रण के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, और इसी के साथ दूसरा जो कीटनाशक हमने बताया इमिडाक्लोरपीड 17.8, उसका मिक्सचर बना के आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जिससे चूसा कीट से के प्रभाव से भी, उसके प्रकोप से भी बचा जा सकता है, और कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक का इस्तेमाल करके बीमारी से भी बचा जा सकता है।
1: जी सर,
0: तो
1: जी विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उसी तरह से आप नियंत्रण करना, तो हम समझते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने जी के लिए। सर, धन्यवाद सर।
0: तो डॉक्टर साहब, अब जैसे किसान वैसे तो पहचान ही लेता है कि क्या लक्षण है क्या नहीं, पर मैं एक बार ये आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआत में ही, चाहे बीमारी हो या कीट हो, शुरू में पकड़े जाएं ताकि कम मेहनत कम पैसे में नियंत्रण हो जाए, क्योंकि बाद में तो देखो दिक्कत ही होती है, चाहे रोग हो या कीट हो। तो शुरू में क्या ऐसे लक्षण हैं, जैसे आपने लाल सड़न की बात करी, पोका बोइंग की बात करी, टॉप रोट की बात करी, तो शुरू में ऐसा क्या, मतलब किसान क्या देखे तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये वाला रोग है, ये वाला कीट है। हाँ, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसी भी रोग आने से पहले यदि किसान समझ जाए, कीट आने से पहले यदि समझ जाए, तो उसका निदान बड़ा आसान हो जाता है और कम लागत में ही उसका निदान किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर सिरोही साहब ने बैक्टीरियल टॉप रॉट की बीमारी की बात की, निश्चित रूप से किसान भाई इसमें और लाल सड़न रोग में थोड़ा भ्रमित हो जाता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा लाल ही होता है। तो
1: जी
0: जब भी हमारी रॉटिंग बैक्टीरिया वाली बीमारी होती है तो उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आता है। तो जैसे ही खेत में कुछ ऐसी किस्में हैं उसमें ज़्यादा दिखाई देता है, कुछ किस्में कम हैं उसमें कम दिखाई देता है, तो दोनों में एक तो बदबू आएगा तो वो बैक्टीरिया से जनित बीमारी है। यदि उसमें बदबू दुर्गंध नहीं आ रहा है तो वो लाल सड़न या कुछ अन्य बीमारी या कीट हो सकता है। तो बैक्टीरिया वाली बीमारी है तो पत्तियों के ऊपरी हिस्सों पर, सबसे ऊपर वाले गोंद की पत्ती सड़ती है, और बीज की पत्ती, गोंद की पत्ती को जैसे ही आप ऊपर की तरफ निकालेंगे तो उसमें बहुत ही लचीलापन हो जाएगा, मुलायम होती है और बदबू बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और धीरे धीरे ऊपर की आंखें सारी के सारे कल्ले फूट जाते हैं।
1: तो सब चर्चा इस पे आगे भी करेंगे, एक फोन आ गया, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: गांव उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ नरेश भाई।
1: इंदरवीर भाई, थोड़ा सा डायरेक्शन बदल लो या घर के बाहर आ जाओ, आवाज कट रही है आपकी।
2: अब आ रही है आवाज?
1: हाँ, अब आ रही है, बताओ क्या क्या सवाल है।
2: ये है कि इंक में ऊपर से पीली पट्टी पड़ रही है और जो गोब है वो सफेद है, उसमें चिपचिपा सा पदार्थ है और वो बिल्कुल झूठ टाइप बन रही है टेढ़ी। एक
1: अच्छा,
2: तो सवाल ये है, दूसरा
1: हाँ जी,
2: सवाल ये है, ईख में बारूमासी आम के पौधे लगा दिए, उसके ऊपर लालड़ी आ रही है और वो भी वो गुयेरू ईख के पत्तों को खा रही है, तो दोनों का सवालों का जवाब आप दिलवाइए डॉक्टर साहब से।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब,
2: धन्यवाद सर।
1: बताइए। सुजीत, डॉक्टर सुजीत जी,
0: आपको नमस्कार। जो आपने लक्षण
2: नमस्कार
0: बता
2: जी।
0: हाँ जो लक्षण आपने बताया है, गन्ने की पत्तियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा पीलापन है, थोड़ा सफेदी है, चिपचिपा जैसे चीजें आपको महसूस हो रहा है। तो ये जो चिपचिपा जैसी चीजें महसूस हो रही हैं, इस समय जो मौसम चल रहा है, इस समय एक
3: चूसक कीट

0: जाता है जिसे कहते हैं मिली बग। मिली बग की वजह से गन्ने की पत्तियों पे ऊपर से लेके नीचे तक गुलाबी रंग के या पिंक कलर के, सफेद रंग के हल्की सी लेके उसमें चिपचिपापन चिपचिपापन आता है। और ये चिपचिपापन इसलिए आता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है क्योंकि उसमें से हनी ड्यू निकलते हैं, मतलब मधुमक्खी वाली जो हनी होती है उसमें मीठापन होता है, जिसकी वजह से उस पर फंगस आ जाएंगे और पूरे पूरे गन्ने के ऊपर काले रंग की एक परत भी बन जाती है जो कि ब्लैक सूटी मोल्ड के फंगस होते हैं, और ये मीली बग की वजह से होता है। अगर इस तरह के लक्षण आपके खेतों में दिखाई दे रहे हैं तो कोई भी कीटनाशक जिसकी चर्चा मैंने अभी किया है, चाहे वो इमिडाक्लोरपीड 17.8 SL का है, इसका 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या क्लोरोपाइरीफास साइपरमेथ्रिन का 55% का मिक्सचर आता है, इसका 300 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं स्प्रे, या प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन का 44% का मिक्सचर आता है, इसका भी 300 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करके इस चिपचिपे वाले चूसक कीट से, मीली बग से बचाव किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न था आपका, आम के ऊपर कुछ ऐसे कीट दिखाई दे रहे हैं,
1: डॉक्टर सिरोही भी कुछ बोलना चाहेंगे
2: जी, बताएं। हाँ इंद्रवी जी नमस्कार।
3: अरे डॉक्टर नमस्कार,
2: मैं ये पूछ रहा था ये जो बीमारी के लक्षण अभी हमारी चर्चा हो रही है डॉक्टर साहब के साथ आपकी, इसमें ये खेत के किनारे की साइड से है ये? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया उसके सिम्टम है ये मिलीबग कीड़ा होता है, और इसके लिए जो दवा जैसे डॉक्टर साहब ने बताई आपको 17.85 से इमिडाक्लोरोपीड जो दवा आती है उसका इस्तेमाल करें। दूसरा आपके आम के पेड़ों पे जो बताइए ये इमीडा भी इसमें काम कर देगी, और आपको अगर ज्यादा उसमें कुछ ऐसा चिपचिपा है, अगर मान लिया लाडली आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे जो कद्दू वर्गीय फसलों पे वो लाल तरह का कीड़ा लगता है, अगर उस तरह का कीड़ा आपको नजर आ रहा है, BSE वगैरह सब बैन हो गई है, तो एक दवा का आप नाम लिख लो, एक डस्ट आती है क्लोरोपाइरोफॉस 10%। हाँ क्लोरोपाइरोफॉस 10%, वो हाँ वो पाउडर रूप में आती है, तो उसका भी उस पर आप बुरकाव कर सकते हो आमों के पेड़ों पे।
3: वो आम उसी में है, लालड़ी लग रही है, उस पर आम ही नहीं आ रही है।
2: हाँ मैं समझ गया आपकी बात। अगर इस पे आप पहले अगर स्प्रे आप गन्ने के खेत पे आप इमीडा क्लोरोपीड का स्प्रे कर लीजिए, उससे भी नियंत्रण हो जाएगा। अगर उसके नियंत्रण में कोई आपको दिक्कत आती है तो वो लाडली जो कीट आपने नाम लिया है उस पाउडर से जो है कंट्रोल हो जाएगा।
1: इंद्रवीर भाई दो चीज बताई है, पहली दवा जो गन्ने का भी जो आपका नुकसान है उसको बचाएगी और आम के को भी बचाएगी, अगर एक कर लोगे तो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आम वाली लालड़ी जो है नहीं गई है, तो वो जो क्लोरोपाइरीफायस 10% वाला डॉक्टर साहब ने बताया धूड़ा, उसको धूड़ देना, ठीक है जी।
3: और
1: बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए जी। डॉक्टर साहब हमारा कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा, पर अब छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।
4: तो अभी आप सुन रहे थे इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, जो कि हमारा विशेष कार्यक्रम था फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था गन्ना फसल में रोग नियंत्रण, जो कि गन्ने की पाठशाला के तहत था। और इसमें जो भी आपको समस्या रही उसमें आप हमें सीधे फोन पर बात कर सकते थे, फोन नंबर हमारे 011-2342-1082, दूसरा नंबर है 2342-1083। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश पराशर, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर, और दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो DS सिरोही वरिष्ठ वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर, और इस कार्यक्रम के इंडियन पोटाश लिमिटेड प्रायोजित हैं।
5: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ खूब कमाओ मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद,

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। और लीजिए, अब सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
3: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल

0: में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, जारी है हमारा फोन इन कार्यक्रम। हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम जारी है। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ना फसल में रोग समस्या जो भी है उससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप विशेषज्ञ से सीधे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2342108 और दूसरा नंबर है 2342108।
2: और इस समस्या को लेकर कोई भी आपके मन में अगर जहन में कोई सवाल आता है या कोई आपको लग रहा है कि हमारी फसल में कोई आप रोगग्रस्त हो रही है तो हमारे डॉक्टर साहब भी वहाँ पर बहुत तैयारी से जुटे हुए हैं। डॉक्टर सुरजीत प्रताप सिंह और डॉक्टर डी एस सिरोही जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: किसान बहनों भाइयों, फोन इन कार्यक्रम में कृषि जगत कार्यक्रम के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, तो फिर से हम आ गए हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह और डॉक्टर DS सिरोही जी, वो हमारे साथ हैं। क्योंकि फ़ोन इन कार्यक्रम है तो बिना फ़ोन के कैसे संपर्क करोगे आप, तो फ़ोन नंबर बता देते हैं आपको। फ़ोन नंबर हमारे वही हैं जो अक्सर रहते हैं, 2342108223421083 2342108223 2342108283 2342108283। दिल्ली का STD कोड जरूर लगाइएगा इन नंबरों से पहले, 011। कोई भी समस्या गन्ने से संबंधित तुरंत फ़ोन कीजिए। और जैसा आप सुन ही रहे हैं, कुछ किसानों ने फ़ोन किए थे, उनकी समस्या का समाधान हमने करा दिया है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन का, तुरंत फ़ोन कीजिए। इससे पहले थोड़ी चर्चा डॉक्टर साहब आपसे कर लें। आपने फ़ोन आ गया है, डॉक्टर साहब इशारा कर रहा है अश्वनी बहुत देर से कि फ़ोन आ गया, तो देखते हैं किस किसान का फ़ोन है। हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्कार जी।
3: जी नमस्कार, सबको नमस्कार। मेरा
2: कौन बोल रहे हैं जी?
3: जी मैं गौरव कुमार, गांव संदलीपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
2: गौरव भाई बताइए क्या सवाल है?
3: मेरा सवाल ये है, अगले महीने सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुवाई होती है, तो उसमें हम क्या सावधानियां रखें जिससे गन्ने की फसल को बीमारियों से बचाया जा सके,
2: बताइए डॉक्टर साहब। सुजीत जी,
4: गौरव जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
4: बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से सारे कृषक भाई बहन हमारे लाभान्वित होंगे। तो अगला 15 सितंबर से जो समय स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है, शरद काल के लिए बहुत ही अनुकूल समय है और अधिक पैदावार के लिए भी एक अनुकूल समय होता है किसान भाइयों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शरद काल में गन्ने की बुआई करेगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक फायदे भी होते हैं। क्या क्या से बीमारी और कीट से बचने के लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। और एक चीज और मैं कर दूं किसान भाइयों को, जो किसान भाई ग्रीन मैन्योरिंग में ढैंचा अभी लगा रखे होंगे तो उस ढैंचा को बहुत जल्दी उसको पलटाई कर दें, क्योंकि पलटाई करने के बाद उसको कम से कम 45-60 दिन के आसपास होना चाहिए। अगर उसमें फ्लावरिंग हो जाती है या उसमें पक जाते हैं तो वो

0: फायदे नहीं मिल पाते जो 45 से 60 दिन में फायदे मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही ढांचा आपका मुलायम होता है उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो जल्दी से जल्दी सड़ने में सहायक होता है, जिससे कि खेत की जुताई कर दें तो उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और खेत में गन्ने की पैदावार में लाभान्वित लाभ पहुंचाते हैं। खेत की तैयारी आप सबसे पहले आप मिट्टी मिट्टी प्लटहल से कीजिए, गहरी जुताई से कीजिए, चीजलर से कर लीजिए, जिससे कि आपके जो नीचे की जो परत है वो टूट जाए। उसके बाद कल्टीवेटर वगैरह चलाइए। सबसे पहले आप मिट्टी को शोधित जरूर कीजिए। मिट्टी को शोधन करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर आता है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में अंकुश के नाम से आता है, या कोई भी ऐसी प्रतिष्ठित संस्थान है उस प्रतिष्ठित संस्थान से आप ट्राइकोडर्मा के कल्चर को आप लीजिए, और कम से कम 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जल प्लावित क्षेत्र हैं वहाँ पे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि भूमिगत में भूमिजनित जो कि मृदा जनित बीमारियाँ हैं इससे बचाव के लिए भी है ट्राइकोडर्मा उसमें मुख्य रोल प्ले करता है। भूमिगत कीट से बचने के लिए बवेरिया बेशियाना और मेटाराइजियम यानी सोपली का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर के साथ दोनों जैविक चीज़ों को मिला लेंगे, जिससे कि उसकी मात्रा बढ़ जाए। और पहली जुताई पे सबसे पहली जुताई करें, उससे पहले मिला के मिट्टी में मिला दें, उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, जिससे कि भूमिगत कीट से भी बचाव कर सकते हैं और मृदा जनित बीमारी से भी बचाव कर सकते हैं। ये तो रही मिट्टी को शोधन करने का तरीका। उसके बाद जो बीज का चयन आप करेंगे, कम से कम 10 महीने का बीज होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि उसमें रोग और कीट का प्रकोप ना हो, और ऐसे शुद्ध बीज का उपयोग करना चाहिए। और उस बीज को 2 आंख का टुकड़ा काट सकते हैं, या नर्सरी लगाना चाहते हैं तो 1 आंख के टुकड़े को काट लें। उसके बाद शोधन किसी भी रासायनिक दवा के साथ शोधन करें, या थायफिनेट मिथाइल ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, या जो इसके अलावा एजॉक्सिस्टोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का मिक्सचर है, 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या लिक्विड है तो 1 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बना लीजिए, और कटे हुए बीज को शोधित करके तभी गन्ने की बुआई करना चाहिए। इसके लिए किस्मों का चयन एक बहुत ही बड़ा कदम होता है किसान भाइयों के लिए। किस्मों का चयन ऐसे किस्मों का चयन करना चाहिए जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हों। जैसे कुछ अस्वीकृत गन्ने की किस्म किसान भाई कभी कभी लगा देते हैं, तो ऐसे अस्वीकृत गन्ने की बुआई नहीं करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुशंसित किस्में हैं उन किस्मों की ही बुआई करें, और अपने क्षेत्र के अनुसार उस क्षेत्र का चयन करना चाहिए। यदि उस क्षेत्र में गन्ना किस्म अच्छा चल रही है तो उसी गन्ना किस्म की बुआई करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बीज संशोधन की बात कही है, तो कितनी देर डुबो कर रखना चाहिए हो?
2: देखिए, ऐसा है जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बीज का शोधन बहुत जरूरी है, और डॉक्टर साहब ने एक बहुत बात कही, जैसे आपने रेड रॉट का जिक्र किया होगा, पिछले श्रोता समझ रहे थे कि किसान भाई सुन रहे हैं कि किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि बीज का उपचार 100% करना है आपको। हमारी 1 साल के लिए 2 साल के लिए फसल जाती है, 1 साल प्लांट केन हम लेते हैं, दूसरे साल हम जो है रेटून लेते हैं, तो अगर वह बीज का शोधन हमारा प्रॉपर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से उसमें निजात मिलेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने ट्राइकोडर्मा का भी जिक्र कर दिया, आपको अपनी बीज का जो हेक्जास्टॉप दवा होती है या थायपोनेट मिथाइल है, कोई भी कार्बिडिजियम किसी भी दवा से आप अपना इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और बतानी है किसान भाइयों को, जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जैसे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रमाणित हमारी वेराइटी है, जैसे CO0118, हम 0238 का अब जिक्र नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, CO0118 है, COLK16202 है, COS18231 है, तो ये वेराइटी जो हैं, इन वेराइटियों का चयन अब थोड़े थोड़े क्षेत्रों पे अब जैसे बीज मिल जाता है, इन बीजों को प्रयोग करें। साथ ही साथ थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा, इसमें मिश्रित फसल के रूप में किसान भाई सरसों की फसल ले सकते हैं अक्टूबर की बुआई के साथ में, और जो है दूसरी फसल लहसुन की भी खेती इसमें कर सकते हैं।
1: तो गौरव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। अगला फ़ोन लेते हैं जी। हेलो,
3: हेलो जी,
1: नमस्कार जी।
3: नमस्कार,
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
3: पवन कुमार, जैतोला डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश।
1: बताएं जी पवन जी, क्या सवाल है आपका?
3: मुझे सितंबर गन्ना बहना था 18231, ये बीज कहाँ से प्राप्त करें?
0: पवन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता दूं। आपने एक अच्छे किस्म का चयन किया है जिसका कोसा 18231 नाम है, जो कि अगेती फसल है और ये सरकार के द्वारा अनुशंसित भी है। तो आप सबसे पहले ये कीजिएगा, आप संभल जनपद के रहने वाले हैं तो आपके क्षेत्र में जो भी लोकल गन्ना विकास परिषद है या सोसाइटी है, उस सोसाइटी पे आप जाइए, अपने इस 18231 के नाम को बताइए और वो

0: हेलो
1: नमस्कार जी, कौन
0: जी। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: साहब बोल रहे हैं जी?
0: डॉक्टर साहब मैं सोनू नागर बात कर रहा हूँ मेरठ से।
1: सोनू भाई बताइए क्या सवाल है।
0: डॉक्टर साहब मुझे सामान्य की प्रजाति लगानी है सितंबर माह में, तो
1: जी
0: प्रजाति का नाम जानना चाहता हूँ सामान्य की। कौन सी प्रजाति लगा सकता हूँ सितंबर में? जी
1: हाँ, सोनू नागर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ
0: डॉक्टर साहब
1: मैं
0: ठीक हो?
1: हाँ जी बहुत बढ़िया जी, आप लोगों का आशीर्वाद है किसान भाइयों का। तो
0: जी
1: आप सामान्य गन्ना लगाना चाहते हैं, तो सामान्य गन्ने में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका
0: जी
1: उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। सामान्य गन्ना में यदि हम बात करें तो अभी देखिए बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि 0-50-11 की खेती कर रहे हैं, अच्छी खेती कर
0: पचास
1: रहे हैं।
0: ग्यारह ठीक है जी। हाँ
1: हाँ
0: जी
1: अच्छी खेती है जैसा आपने भी बताया, और इसकी भी खेती कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सामान में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। सामान में यदि हम बात करें तो कोसा 16-233 एक किस्म है जो कि मध्य प्रदेश से पकने वाली है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर से ये अवमुक्त हुई है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें चीनी की मात्रा भी ज़्यादा है और उपज भी आप अच्छा ले सकते हैं। इसके अलावा कोसा 14-233 है जो कि ये भी बहुत पुरानी वैरायटी नहीं है, नई वैरायटी है और ये भी मध्य प्रदेश से पकने वाली है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका बुआई में आप यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और वैरायटी की ज़रूरत है मध्य प्रदेश से पकने वाली, तो अपने संबंधित गन्ना विकास परिषद या सोसाइटी में आप संपर्क कीजिए, वहाँ से जो भी अनुशंसित है उस गन्ना किस्म का बुआई करके आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और किस्म है जो कि आपके क्षेत्र में है, ये लखनऊ से रिलीज हुई है, कोलक 15-207। तो इस किस्म का भी आप बुआई कर सकते हैं। कोलक 15-206 भी किस्म है, इस किस्म की बुआई करके आप ज्यादा ज्यादा ले सकते हैं। ये सारे सामान्य पकने वाली वैरायटी
0: डॉक्टर
1: हैं।
0: सरोही को जोड़ना चाहेंगे।
2: मैं किसान भाई, आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा दो वैरायटी करनाल से जो रिलीज हुई हैं उनके बारे में बताना। थोड़ा बीज लेकर के आप अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक वैरायटी का नाम है CO 17018, और जिसको हेलो,
1: हाँ बोलिए बोलिए,
2: और
1: आप बोलिए
2: एक
1: डॉक्टर।
2: वैरायटी CO 18022। इन दो किस्मों को भी आप अपने सामान्य प्रजाति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: सोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं जी।
0: रेडियो
1: हेलो,
0: हेलो। नमस्कार सर,
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
0: ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर गांव, जिला गौतम बुद्ध नगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से।
1: बहुत
0: मैं
1: स्वागत ऋषिपाल भाई आपका, बताइए क्या सवाल है?
0: ठीक है नरेश भाई, और सुनाओ?
1: बढ़िया है जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब
0: हाँ
1: से।
0: बस वो गन्ने के चक्कर में ही था। असल में हमने पेड़ी वो रखी थी 10-20 पेड़। हेलो।
1: हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ
0: हाँ जी, तो उसमें सड़ाई सी लग रही है पेड़ी में।
1: पीढ़ी में सलाई, थोड़ा लक्षण हमें अस्पष्ट नहीं हो रहे हैं आपके
0: जैसे
1: द्वारा।
0: सलाई चीनी हो जाती है जी, या ऊपर से जैसे कुछ खा लेता है।
1: हाँ जी मैं बता रहा हूँ, सलाई तो या तो अंकुर बेधक लगते हैं लेकिन ये अंकुर बेधक लगने का समय नहीं है। तो आपके कीटों में जो छेद हो जा रहे होंगे, अगर पत्तियां कट जा रही होंगी, तो ये पीढ़ी फसल में एक सामान्य जो कीट होता है जो जिसे हम सैनिक कीट कहते हैं। सैनिक कीट मुख्य रूप से पीढ़ी फसल में ही पाई जाती है और पत्तियों को कुतर कर ये खाने वाला कीट होता है, जिससे कि पत्तियों में छेद भी हो जाता है। इसके अलावा ग्रास हॉपर भी होता है जिसे टिड्डा कहा जाता है, ग्रास हॉपर से भी पत्तियां नुकसान में पहुंच जाती हैं, या यूं कहें जहां पे पुरानी पत्तियों का सम्मेलन होता है, पुरानी पत्ती ज्यादा पाई जाती है, वहां पे सैनिक कीट का भी प्रकोप ज्यादा होता है और उन जगहों पे कुछ अन्य कीट भी आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए आप कीटनाशक का इस्तेमाल स्प्रे कर दें जिससे सैनिक कीट से बचाव आप कर सकते हैं। क्लोरपायरीफास का भी स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोरपीड का भी कर सकते हैं। ऋषिपाल भाई
0: जी
1: ये तो आपने थोड़े क्षेत्र में लगा रखी है ना अपने लिए,
0: हाँ जी
1: डॉक्टर साहब कोई जैविक तरीका है रोकने का?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आप सभी आपके माध्यम से किसान भाइयों को बता दूं, इस समय जो समय चल रहा है चोटी बेधक का, तीसरी पीढ़ी खत्म होगी, चौथी पीढ़ी की यह शुरुआत हो गई है, और आपके क्षेत्र में बिजनौर जनपद में एक नया कीड़ा मुझे दिखाई दिया है जो कि अभी निरीक्षण करने के बाद दिखा है, जो कि प्लासी बोरर के नाम से यह जाना गया है। और प्लासी बेधक एक ऐसा कीट है जो कि बिजनौर जनपद में है और मुजफ्फरनगर जनपद के कुछ ऐसे जगहों पे दिखाई दिया है। इसमें एक गन्ने में कम से कम लार्वा जो होती है, सूंड़ी की संख्या 100 से ज्यादा होती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो इस समय रसायनों का उपयोग कम से कम करें और जैविक रूप से आप उसमें इस्तेमाल करें। जैविक के रूप में कौन सा हथियार यूज करेंगे? ट्राइकोकार्ड के नाम से एक जाना जाता है, ट्राइकोग्रामा जापोनिकम के नाम से एक जैविक कीट आता है, या जापोनिकम के अलावा ट्राइकोग्रामा केलोनिस के

0: नाम से एक जैविक कीट है जिनका उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय में भी किया जाता है, और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के 3 केंद्रों पर मुजफ्फरनगर संस्थान, शाहजहांपुर और पूर्वांचल में कुशीनगर जनपद के सेवरही संस्थान पे भी किया जाता है। तो ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल 20,000 अंडे प्रति एकड़ की दर से आप यूज करेंगे, तो उसमें आप जो सलाई अंकुर बेधक या चोटी बेधक, इसके अलावा जो प्लासी बेधक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें ट्राइकोग्रामा किलोनिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि उसकी संख्या की मैं बात करूँ तो 1,25,000 की संख्या में आप अंडों की अंडे उसमें
1: चला देंगे, मतलब मोबाइल से बेच रहे थे।
0: प्रत्यारोपित करेंगे, तब जाके प्लासी बेधक से भी बचाव कर सकते हैं या चोटी बेधक से बचाव कर सकते हैं। और इस समय तना बेधक का बहुत ही अनुकूल समय
1: तो
0: चल रहा
1: ले
0: है,
1: लो
0: तो तना बेधक से बचने के लिए भी
1: आवाज
0: आप
1: को थोड़े।
0: ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करके जैविक विधि से बिना किसी दवा का इस्तेमाल किए तना बेधक से भी बचाव कर सकते हैं, पोरी बेधक से भी बचाव कर सकते हैं, अन्य बेधक से भी बचाव किया जा सकता है।
2: तो ऋषिपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो हम पहले बात कर रहे थे, रोग की बात चल रही थी हमारी शुरू में, तो 3 रोगों का जिक्र आप दोनों ने किया है कि ये रोग हैं और उनका नियंत्रण भी बताया। इसके अलावा बरसात के इस मौसम में कोई अन्य रोग भी है जो आके जो हमारे गन्ना किसान हैं उनको परेशान करे?
0: हाँ, कुछ ऐसे पश्चिमी क्षेत्र हैं या मध्य क्षेत्र हैं वहाँ पे कुछ रोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी गन्ना किस्म है जिसमें घासी प्ररोह रोग दिखाई दे रहा है। घासी प्ररोह रोग को मैं आसान भाषा में बता दूं, ग्रासी सूट डिजीज कहा जाता है, और इसमें एक क्लब में कम से कम झूठे कल्लों की संख्या बहुतायत मात्रा में हो जाती है। और एक मदर सूट होता है, तो जो झूठे कल्ले होते हैं वो गन्ने में परिवर्तित नहीं हो पाते। ऐसे जहां पे बीमारी दिखाई दे रहे हैं तो किसी भी दवा का इस्तेमाल किसान भाई ना करें, फफूंद नाशक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि आप कहीं अनभिज्ञ व्यक्ति से आप दवा के बारे में पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत सारे दवाओं का आपका दे
2: नाम
0: देगा
2: बता देगा।
0: दे देगा और आपके पैसे ज्यादा नुकसान होंगे। तो आपको करना क्या है, उस संक्रमित पौधे के मूड़ को, उस क्लंप को जिसमें जिसमें उसमें जो झूठे कल्लों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको समूचा जड़ सहित निकालें और मिट्टी के नीचे दफना दें। यदि इसकी मात्रा ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका आपतन ज्यादा है, तो एक काम किसान भाई जरूर करें, उसमें कोई कीटनाशक का स्प्रे कर दें। जैसे इमिडाक्लोरबिट का भी इस्तेमाल कर स्प्रे कर सकते हैं। इससे फायदे क्या हैं, इससे फायदे यह हैं कि इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करते हैं ये चूसक कीट करते हैं। जब चूसक कीट को मारने के लिए हम कीटनाशक का स्प्रे कर देंगे तो बीमारी केवल एक क्लब में ही बचा रहेगा, दूसरे पौधे पे ये ट्रांसमिट नहीं हो पाता, जिससे दूसरा स्वस्थ पौधा आपका बच जाता है। तो ये ग्रासी सूट से बचने के लिए बहुत ही आसान और ये इकोनॉमिक तरीका है, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला तरीका है। एक बीमारी और चर्चा में कर दूं, क्योंकि वो बीमारी आने वाली है, किसान भाई कभी कभी परेशान हो जाता है गन्ने के पीलापन को लेके, और गन्ने के पीलापन में एक वायरस जनित बीमारी आती है जो कि अक्टूबर महीने से शुरुआत होती है, सितंबर लास्ट से अक्टूबर से शुरुआत होती है। इससे किसी भी तरह के इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक नुकसान किसान भाइयों को नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस समय और इस वायरस से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के वातावरण के अनुकूल जो वातावरण दिखाई दे रहा है, वायरस से बिल्कुल ना घबराएं। इस समय जो पत्तियां पीलापन दिखाई दे रही हैं तो बहुत सारे किसान भाई इसको वायरस मान ले रहे हैं, लेकिन आज के समय में जितनी भी पत्तियां पीलापन दिखाई दे रही हैं, ये ऊपर जो नुकीला वाले पत्ती हैं वहां से शुरुआत में दिखाई दे रहा है, तो वहां से यदि पीलापन दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से जड़ों में ये इसकी बीमारी है, जिसे उकठा रोग कहा जाता है, विल्ट कहा जाता है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा मैंने पहले ही शुरुआत में किया था। उससे बचने के लिए कोई भी फफूंदनाशक, सिस्टमिक नेचर के फफूंदनाशक की ड्रेंचिंग कर देंगे तो निश्चित रूप से उस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। तो ये सम्यक विषय पे समसामयिक बीमारी थी जो कि किसान भाइयों को मैंने बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही संक्षिप्त सरल भाषा में बता दिया। यदि किसान भाई इसको पहचान के यदि समय से इसका उपचार कर ले तो निश्चित रूप से बीमारी से होने वाले जो आर्थिक नुकसान है इससे बचा जा सकता है।
2: डॉक्टर साहब, पीलेपन की आपने जिक्र करी है, पीलापन आपने कहा कि रोग की वजह से भी हो रहा है, पीलापन हो सकता है कि सूक्ष्म पोषक
1: तत्वों की
2: तत्व
1: वजह
2: हैं
1: से होता है।
2: या बाकी जो तत्व हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, तो अंतर कैसे करें किसान?
1: देखिए, ऐसा है जैसे डॉक्टर साहब ने भी इंसेक्ट और डिजीज के बारे में विस्तार से समझा दिया।
2: जी,
1: अभी एक किसान भाइयों के लिए एक एक चैलेंजिंग जो समस्या है इस टाइम पे, किसान भाई ज्यादातर लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव।

0: में किसान भाई यूरिया का अत्यधिक प्रयोग बरसात के बाद भी करते रहते हैं। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की बात करें, पोषक तत्व का प्रबंधन के ऊपर हम बात करें, अब किसान भाइयों को चाहिए इस समय में कि जो यूरिया का इस्तेमाल है उसको ना करें, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, मानसून दरकिनार चलता आ रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है।
1: जी, जी.
0: जो नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों ने सभी ने डाल ली है,
1: जी.
0: अभी अगर उनका मन नहीं मानता है तो एक तत्व जैसे अभी IPL का प्रोडक्ट है,
1: जी
0: दो खाद इस टाइम पे और गन्ने के पोषण के लिए बहुत बढ़िया है,
1: जी
0: पॉलीहेलाइट 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें, या एक बाजार में आता है पोटेशियम सोनाइट के नाम से, किसी भी कंपनी का हो सकता
1: जी
0: है, तो उसको जो है 15 किलो से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई बधाई के बाद अपने उसकी लाइनों में इस्तेमाल कर दें, तो उससे गन्ने की वृद्धि भी होगी, मोटाई भी बढ़ेगी और गन्ने का वजन भी बढ़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया है, देखते हैं किस किसान का है। हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: जी,
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, बलवान बोल रहे, ग्राम कलदम डिस्ट्रिक्ट से।
1: बलवान?
2: हाँ जी,
1: हाँ बता भाई बलवान, ये सवाल है तेरा।
2: मेरा सवाल है जी, मैं किचन गार्डन में लाना जी, किस्म बताओ जो ही।
1: अच्छा, अपने घर की ताई चाहिए?
2: हाँ, घर दोगा चाहिए जी।
1: चलो, कितनी जगह है वो, फिर उसके हिसाब से डॉक्टर साहब बता देंगे।
2: वैसे आधे कनाल है जी।
0: अच्छा, आधा कनाल है तो साहब आप कैथल से हैं तो आप करनाल से जो आप अपने किचन गार्डन पर्पज के लिए वैरायटी ले सकते हैं, तो अभी उस पर्पज के लिए आपको जो वैरायटी है वहाँ पे दो तीन वैरायटी मिल जाएंगी आपको, उस CO 18022 उसकी आँख मिलेंगी आपको, 1 अक्टूबर से बीज मिलना शुरू हो जाएगा वहाँ पे आपको, और 17018 16030 कोई भी तीनों किस्मों में से कोई भी आप किस कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैरायटी सामान्य बिजाई की है, सामान्य कैटेगरी में आती हैं और अच्छी हैं, आपको गन्ना चूसने के लिए खाने के लिए चाहिए, उस पर्पज के किचन गार्डन में चाहिए, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: कद वो सक है डॉक्टर साहब, ये बता दो।
0: 15 सितंबर के बाद जो है, जैसे मैं कोशिश करूंगा इन्हें कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बोएं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, और इसमें खाद पाद यूज, खाद फूड या के
0: खाद में आप इसमें किचन गार्डन के तो जैविक का प्रयोग करें, आप गोबर की सड़ी खड़ी खाद का इस्तेमाल करें, ठीक है ना?
2: हाँ जी, गोबर की, ठीक है जी।
0: और ऊपर से हल्की फुल्की जरूरत होगी तो फिर आपको बता देंगे, बाकी इसमें इस टाइम पे गोबर की खाद डालें अपने किचन गार्डन के लिए। आप जैविक
1: तैयारी करोगे ना, जब उस जगह की खेत की तैयारी करोगे आप, तो उसमें सड़ी हुई गोबर की पर सड़ी हुई होनी चाहिए।
2: सड़ी खाद है जी मेरे पास, खड्डा की खाद है, वह गेट दूंगा।
1: वही कहना, ठीक है बलवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका,
1: राम राम भाई। डॉक्टर साहब, शरदकालीन जो गन्ने की बुआई है उसकी चर्चा हुई थी, लेकिन वो पूरी हुई नहीं है क्योंकि समय नजदीकी है, तो जो किसान शरदकालीन समय में गन्ना लगाना चाह रहा है तो किस तरह से आपने खेत की तैयारी तो बताई है, पर एक बार दोबारा से आप बताओ कि किस तरह से खेत की तैयारी करें, कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म अनुकूल रहेगी, ज्यादा पैदावार मिलेगी, तो इसके बारे में चर्चा आप थोड़ी सी करते हैं।
0: देखिए, ऐसा है जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, खेत की तैयारी कैसे नहीं है, गहरी जुताई करनी है खेत की, है कि नहीं
1: जी,
0: और साथ ही साथ जो आपने खेत की तैयारी करने के बाद में दो चीजों, गन्ने का मेथड का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर किसान भाई अपना उत्पादन अच्छा चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, किसी भी चाहे हम पूर्वांचल की बात करें
1: जी,
0: ट्रेंच मेथड से कम गन्ने की जो वो है अक्टूबर का जो महीना है, इसमें अगर ट्रेंच के साथ अंत्य फसल के रूप में दूसरी भी फसल लेंगे तो ट्रेंच विधि से अगर गन्ने की खेती करेंगे तो उससे उत्पादन पे कम से कम 20-25% की पैदावार पे फर्क पड़ेगा।
1: आपने सह फसलीकरण की बात की है डॉक्टर साहब, तो जो गन्ने की लाइन है दो, उनके बीच में कितना अंतर छोड़ना पड़ेगा?
0: अब डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे जो इनकी अनुसूचित वेरायटी है, ट्रेंच विधि में कौन कौन सी किस्में हैं, कितने पे गैप करके हम करें, 5 फीट पे हम करें,
1: क्योंकि जगह तो दूसरी फसल के लिए चाहिएगी ना डॉक्टर साहब, तो क्या कितनी दूरी बना के रखनी पड़ेगी?
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसान भाइयों का इस शरदकाल का समय आने वाला है, तो आप देखो किसान भाई इस समय वाइड डिस्टेंस पे ही जा रहा है, क्योंकि जितना अगर वाइड डिस्टेंस से, मतलब वाइड डिस्टेंस का मतलब कि दूरी जितना ही बढ़ाएंगे, गन्ने की मोटाई निश्चित रूप से बढ़ती है, क्योंकि प्रकाश अच्छे तरीके से सारे गन्नों को मिलेगा, तो कम से कम 4 फीट रखने की बिल्कुल जरूरत है। 4 फीट आप रखिए, 4 फीट पे गन्ने की बुआई कीजिए। किस्मों का चयन निश्चित रूप से जितना डॉक्टर साहब ने बताया, कोसा 18231 ले सकते हैं, कोसा 19231 ले सकते हैं, कोसा 17231 ले सकते हैं, कोसा 13235 ले सकते हैं, या कोयम्बटूर की

0: को 0118 ले सकते हैं, को 98014 है, लखनऊ की अनुशंसित वैरायटी जो है को लख 14201
1: ठीक
0: है,
1: है
0: को लख 16201 है। जलप्लावित क्षेत्र हैं, यदि कम जलप्लावित क्षेत्र है वहां पे अगेती फसल लगाना चाहते हैं तो कोसा 13231 का चयन कर सकते हैं, कोसा 10239 का चयन कर सकते हैं, को या UP 0125। ये तीनों किस्में जलप्लावित क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा उपज देने की क्षमता रखती है। इन वैरायटी किस्मों का चयन करके 4 फीट की दूरी पे आप गन्ना बोएं। अगर बीच में सह फसली, चूंकि शरद काल में सह फसल लगाना है, तो निश्चित रूप से सह फसल के साथ जाना चाहिए। सह फसल में सबसे अच्छा पैदावार सह फसल के रूप में दूसरी क्रॉप की भी ले सकते हैं और मेन क्रॉप आपकी गन्ने से भी ले सकते हैं। तो आलू की भी बुआई कर सकते हैं, मूली साग सब्जी में मूली ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, गाजर की खेती कर सकते हैं, अलसी, फ्रेंच बीन, जितनी भी आपकी साग सब्जी हैं उन सारी, लहसुन भी ले सकते हैं। तो इस तरह
1: कम
0: से
1: अवधि
0: आप
1: वाली जितनी फसल है
0: कम
1: जो
0: अवधि में, जो कि
1: हाँ
0: 3 से 4 माह
1: 4 महीने
0: में
1: में
0: ये पक के
1: जी
0: कट
1: जी
0: जाती हैं, तो गन्ने पे किसी भी तरह के विषम प्रभाव नहीं पड़ता और आपकी गन्ने की पैदावार भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती और अधिक से अधिक उत्पादन भी मिलता है।
1: तो सह फसली अगर आपने लेनी है गन्ने के साथ दूसरी फसल लेनी है, अपना मुनाफा बढ़ाना है किसान बहनों भाइयों, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कम से कम 4 फीट का आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है, और उसमें आप बीच में जो आलू बो दो हाँ, अंत्य फसल मूल
0: के रूप में
1: जी
0: साग सब्जी में, जैसे आलू हो गए आपके,
1: जी
0: अन्य साग सब्जी फसल कोई भी आप उसमें ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है, दो फसल ले रहे हैं हम, गन्ना तो है ही, दूसरी फसल और उसमें ले रहे हैं हम खेत में, तो जो खाद है, चाहे आप जैविक खाद की बात कर लो या रासायनिक खाद की बात कर लो, तो उनकी मात्रा बराबर ही रहेगी या थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी?
0: देखिए, अभी डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। 100, ये जो हमारे जो अक्टूबर वाली जो प्लांटिंग होती है, ऑटम प्लांटिंग जिसको हम कहते हैं,
1: जी
0: इसमें हमारी खाद की रिकमेंडेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है स्प्रिंग प्लांटिंग के बनस्पत।
1: जी
0: तो इसको विस्तार से डॉक्टर साहब बताएंगे अब आपको।
1: छोटे शब्दों में बता दो डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, आप अभी शरद काल में जो भी गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटेशियम का यूज करना चाहिए। तो इस अनुशंसित रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम शरद काल गन्ने की बुआई किया जा सकता है।
1: डॉक्टर सुजीत जी, डॉक्टर सरोई जी, आप कार्यक्रम में आए, हमारे किसानों की जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान किया, बहुत अच्छी जानकारी दी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, जिसका विषय था गन्ना फसल में रोग नियंत्रण पर। हमारे सारे किसानों ने बहुत अच्छे कॉल भी आए, उन्होंने जानकारी भी अपने लिए, और हमारे हमारे हमारे जो नरेश पराशर साहब ने इसका संचालन किया, और हमारे डॉक्टर साहब सुरजीत प्रताप सिंह जो वैज्ञानिक गन्ना अनुसंधान संस्थान साजापुर से थे, डॉक्टर DS सरोही जो वशिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर से थे, बहुत अच्छे और बहुत तरीके से सलीके से इन इन इन फसलों पर जो जो प्रश्न हमारे पूछे गए उनका उनका जवाब दिया। और अब सुन लेते हैं एक स्पॉट।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
5: इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम
2: राम
5: राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और सहयोगी थे शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कुछ गज़ल सुनने का, तो लीजिए सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में ये गज़ल।

0: श्रोताओं, गज़लों का सफ़र यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ, 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलेंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया। इसके अंतर्गत प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गईं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा और राजघाट डिपो पर एक पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
3: इन बस सेवाओं के माध्यम से नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरकेपुरम, कनॉट प्लेस, ITO, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम जैसे प्रमुख रोजगार, शैक्षणिक और संस्थागत केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा का शुभारंभ दिल्ली से हरियाणा के प्रमुख शहरों को स्वच्छ और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस मार्ग पर 5 इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन बसें संचालित होंगी और दोनों दिशाओं में प्रतिदिन कुल 10-10 यात्राएं निर्धारित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का दृष्टिकोण ऐसा सार्वजनिक परिवहन तंत्र तैयार करना है जो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। वहीं दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को यह लेडीज स्पेशल बस सेवा एक विशेष उपहार है। श्री सिंह ने कहा कि इन सभी पहलों के माध्यम से दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए खास बसें शुरू की गई हैं, जिनमें अभी 56 बसें चल रही हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएंगी। यह नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ, सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब इस महीने की 24 तारीख तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं, वे 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की गिरफ्तारी पर कहा है कि सदन में CAG की 19 रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के समय हुए सभी घोटालों की जांच चल रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि CAG की सभी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
4: 19 सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार का था वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं।

0: और कार्रवाई चल रही है और एजेंसी काम कर रही है।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया कि पेंशन की राशि 1 सितंबर से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जेजे कॉलोनी और ओल्ड पंखा रोड में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। ये दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों तक सस्ती पौष्टिक भोजन की सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि जो लोग दिनभर काम करते हैं और उन्हें घर पर खाना बनाने का समय नहीं मिलता, उनके लिए ये एक उपयोगी सुविधा होगी।
2: जो लोग दिन में 2 बार एक ही बार बना खाना खाते हैं, उनके लिए एक उपयोगी साधन होगा और ये हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो हमारा नारा है, जिसमें हमने दिल्ली की गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जीवन देने का वादा किया था, उनको वहीं पर पक्के मकान भी देने का काम चालू हो गया है, भोजन देने का काम शुरू हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
1: श्री आशीष सूद ने आज एक जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों के साथ संबंधित विषयों पर चर्चा कर समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना ही जनसुनवाई का उद्देश्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने कहा कि इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र होना चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो, जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए जागृति शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान के लिए एक सुरक्षित केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मेडिकल शिविर में अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन 2 लोगों पर हमला किया था। हमले में 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में एक इकाई पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग 250 कम गुणवत्ता वाली एल्यूमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त किए गए। ये कार्रवाई अधिनियम 2016 की धारा 28 के तहत कथित गैर अनुपालन की सूचना मिलने के बाद की गई। प्रादेशिक समाचार

0: नमस्कार, आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें, बल्कि उनकी चिंताओं को सुनने, समझने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा DSS कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में तैनात किया है। सर्विस विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, व्यापार कर और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और संरचित तैयारी रणनीतियों को देशभर के विद्यार्थियों तक पहुंचाकर एक सशक्त राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है। आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दूसरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसरों में CCTV कैमरों के जरिए मुख्य मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सबसे पहले छात्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लिंगदोह कमेटी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नई दिल्ली के टिकरी कलां के एक CNG पंप पर आज दोपहर एक ट्रक में धमाका हुआ। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दोपहर 3:37 पर आग लगने की खबर मिली। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ। 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलाई जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया। प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गईं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम गीत मालिका में कुछ अपने मनपसंद गीत सुनने का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे गीत लाई हूँ जो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आशा है कि आप सभी को भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

साथ ही अभी आप सुन रहे थे हीर रांझा फिल्म में अनवर और लता मंगेशकर की आवाज़। और लीजिए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों आप सुनते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज ने।

साथियों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गाना नहीं, ये उन तमाम दिलों की आवाज़ है जिन्होंने कभी किसी को चुपके से चाहा है, किसी का इंतजार किया और फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे प्यार है।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म जुनून का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव ने। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम भूल सकते हैं, लेकिन पहली मोहब्बत की खुशबू, पहली मुलाकात की धड़कन और किसी अपने की आवाज़ में छुपी वो मिठास शायद कोई कभी नहीं भूलता।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क का ये गीत, जिसे स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें दूरी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर पाती है। अगर आपको सच्चा प्यार है तो इंसान दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहता है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लावारिस से आशा भोसले और किशोर कुमार को, और इसी गीत के साथ आज का हमारा ये गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर, और लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ मैं सुजाता शुक्ला। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आज किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। भारत ने पिछले वर्षों में विज्ञान अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतरिक्ष से लेकर स्वास्थ्य तक, डिजिटल तकनीक से लेकर कृषि तक, और क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर सेमी

रिएक्टर तक भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने देश की क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए जानते हैं भारत की कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के बारे में। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा। इसके साथ भारत इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। प्रज्ञान रोवर ने चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए और सल्फर सहित विभिन्न तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद आदित्य L1 मिशन ने सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। फरवरी 2025 में इसके सूट उपकरण ने एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर के निचले वायुमंडल के अभूतपूर्व तस्वीरें प्राप्त की। 2025 में स्पारडेक्स मिशन ने दो उपग्रहों की अंतरिक्ष में ऑटोनोमस डॉकिंग और अनडॉकिंग तथा उनके बीच पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन किया। इसके साथ भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन, सैटेलाइट सर्विसिंग और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष विज्ञान केवल चंद्रमा और ग्रहों तक सीमित नहीं है। नाविक जैसी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली परिवहन, समुद्री गतिविधियों, आपदा प्रबंधन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में उपयोगी है। मौसम पूर्वानुमान, कृषि संचार, आपदा चेतावनी और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने 2025 में श्रीहरिकोटा से अपना 100वां प्रक्षेपण भी पूरा किया। साथ ही नासा के साथ संयुक्त निसार मिशन भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष साझेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य और बायोटेक्नोलॉजी में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में विकसित और निर्मित वैक्सीन ने देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी क्षमता को दुनिया के सामने रखा। आज भी भारतीय वैज्ञानिक जीनोमिक डायग्नोस्टिक, ड्रग डिस्कवरी, जीन एडिटिंग और प्रिसीजन मेडिसिन जैसी क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैंसर रिसर्च, नई दवाओं और रोगों की शीघ्र पहचान के लिए भी किया जा रहा है। भारत की बायो इकोनॉमी भी तेजी से विस्तारित हुई है। सरकारी आकलन के अनुसार लगभग 12 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी करीब 10 लाख अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 119 अरब डॉलर तक पहुंची है। भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि में वैज्ञानिक तकनीक का महत्व अधिक है। आज रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सैटेलाइट इमेजरी, सॉइल टेस्टिंग, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग खेती को अधिक उत्पादक और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सैटेलाइट डेटा से फसल की स्थिति, सूखे और जल संसाधनों की निगरानी की जा सकती है। ड्रोन से खेतों में फसल निरीक्षण और टारगेटेड स्प्रेइंग भी संभव हो रही है। इससे किसान को कम संसाधनों में अधिक उत्पादन, बेहतर निर्णय और मौसम के जोखिमों से निपटने में सहायता मिल सकती है। डिजिटल तकनीक ने भारत में सेवाओं के स्वरूप को बदल दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल भुगतान और UPI ने करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय लेन देन को सरल बनाया है। आज मोबाइल फोन से कुछ ही क्षणों में भुगतान किया जा सकता है। अगला बड़ा क्षेत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। भारत में भारतीय भाषाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप AI विकसित करने में जोर दिया जा रहा है। भारत जैन जैसी पहली मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल AI की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है। AI का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, यातायात, भाषा अनुवाद और वैज्ञानिक अनुसंधान में बढ़ रहा है। अगली क्रांतिकारी तकनीकों में क्वांटम टेक्नोलॉजी का नाम प्रमुख है। भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मटेरियल्स के क्षेत्र में अनुसंधान को गति दी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी भविष्य में अत्यंत जटिल गणनाओं, सुरक्षित संचार, नेविगेशन, मेडिकल सेंसिंग और साइंटिफिक सिमुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेमीकंडक्टर तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आज मोबाइल फोन से लेकर ऑटोमोबाइल, सैटेलाइट और मेडिकल इक्विपमेंट तक लगभग हर उपकरण के पीछे सेमीकंडक्टर चिप होती है। भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत बड़े स्तर पर निवेश और परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने चिप डिजाइन में महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की है। उदाहरण के तौर पर इसरो और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने अंतरिक्ष उपयोग के लिए 32-बिट विक्रम प्रोसेसर विकसित किया है। इसके अलावा 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर नाविक और GNSS सिग्नल के लिए इंडिजिनस बेसबैंड ASIC विकसित किया गया है। यह उपलब्धियां भारत की स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच विज्ञान का एक बड़ा लक्ष्य है स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा।

भारत में सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल्स, एडवांस बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज जैसी तकनीकों पर अनुसंधान और विकास हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में उद्योग, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। विज्ञान का सीधा संबंध लोगों की सुरक्षा से भी है। आज भारत में वेदर रडार, सैटेलाइट्स, न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी पहले से बेहतर हुई है। चक्रवात, भारी वर्षा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की पहले चेतावनी मिलने से प्रशासन और आम जनता को तैयारी के लिए अधिक समय मिलता है। सरकारी आकलन के अनुसार देश में वेदर रडार नेटवर्क के विस्तार से फोरकास्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत की वैज्ञानिक दृष्टि अब समुद्र की गहराइयों तक भी पहुँच रही है। डीप ओशन मिशन के माध्यम से डीप सी एक्सप्लोरेशन, मरीन बायोडायवर्सिटी, समुद्री संसाधनों और अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है। समुद्र विज्ञान का महत्व केवल संसाधनों तक सीमित नहीं है। समुद्र जलवायु, मौसम, मत्स्य संसाधन और तटीय जीवन को प्रभावित करता है। विज्ञान से स्टार्टअप तक, भारत में विज्ञान और इनोवेशन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब रिसर्च लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज से निकलकर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज तक पहुँच रही है। विशेष रूप से स्पेस सेक्टर इसका एक अच्छा उदाहरण है। भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में लगभग एक से बढ़कर फरवरी 2026 तक 400 से अधिक हो गई है। यह बदलाव बताता है कि भारतीय युवा केवल टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ता नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी के निर्माता भी बन रहे हैं। श्रोताओं, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की यह यात्रा केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, यह उस परिवर्तन की कहानी है जिसमें विज्ञान प्रयोगशाला से निकलकर किसान, विद्यार्थी, मरीज, उद्यमी और आम नागरिकों के जीवन तक पहुँच रहा है। चंद्रयान से लेकर सेमीकंडक्टर तक, वैक्सीन से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक, UPI से लेकर AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, भारत का वैज्ञानिक विकास अब ज्ञान, नवाचार, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण को एक साथ जोड़ रहा है। आने वाले समय में ज्ञानयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड एडवांस AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्र भारत को एक विकसित और जन आधारित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही है विज्ञान की शक्ति, नई खोज, नई तकनीक और बेहतर भविष्य। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।

0: डॉक्टर संजय वत्स।
1: हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, शोध और समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक, महान शिक्षाविद और दूरदृष्टी विचारक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूरदृष्टी विचारों से भारत में पुस्तकालय विज्ञान को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने पुस्तकालय को केवल पुस्तकों के संग्रह के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे ज्ञान के प्रसार, शिक्षा, शोध और समाज के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र माना। यदि हम पुस्तकालय के इतिहास पर एक नजर डालें तो पाएंगे कि पुस्तकालय मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही विकसित हुआ है। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों के साथ ही उनके केंद्र में पुस्तकालय केंद्रित रहा। नालंदा में देश विदेश से विद्यार्थी और विद्वान यहाँ पर पुस्तकालयों का उपयोग करने के लिए आते रहे हैं। समय के साथ साथ हस्तलिखित पांडुलिपियों से मुद्रित पुस्तकों और फिर आधुनिक पुस्तकालयों तक की यात्रा हुई। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालयों ने शिक्षा और शोध को आगे बढ़ाने में विशेष महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। पुस्तकालयों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी लोगों में शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक चेतना को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थात पुस्तकालय का इतिहास केवल पुस्तकों का इतिहास नहीं है, यह वास्तव में मानव और सभ्यता के विकास का इतिहास है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पुस्तकालय हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनी हुई है। मोबाइल, इंटरनेट, ई पुस्तकें, ई जर्नल, ऑनलाइन डेटाबेस और डिजिटल रिपोजिटरी ने ज्ञान तक पहुंच को अत्यंत आसान बना दिया है। एआई आधारित प्रणालियां बड़ी मात्रा में सूचनाओं को व्यवस्थित करने और दस्तावेजों का वर्गीकरण करने के आधार पर सामग्री खोजने और उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। एआई पावर्ड स्पीच रिकमेंडेशन सिस्टम, चैट बॉक्स, वॉइस सर्च, ऑटोमेटेड मेटाडाटा जनरेशन, सिस्टमेटिक रिसर्च जैसी तकनीक पुस्तकालय सेवाओं को अत्यधिक तेज और उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रित बनाती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई शोधार्थी किसी विषय पर जानकारी चाहता है, भविष्य के पुस्तकालय में वह केवल कुछ शब्द टाइप नहीं करेगा बल्कि एक प्रश्न पूछेगा और एआई प्रणाली उसके लिए संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्टों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों की पहचान कर सकती है। इस प्रकार पुस्तकालय इंफॉर्मेशन स्टोरेज से इंटेलिजेंट नॉलेज सेंटर की रूप में बढ़ रहे हैं। भविष्य का पुस्तकालय किस प्रकार होगा, अब वो डिजिटल लाइब्रेरी से इंटेलिजेंट लाइब्रेरी तक का सफर तय कर रहा है। पुस्तकालयों का भविष्य डिजिटल होने तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में हम ऐसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लाइब्रेरीज देख सकते हैं जहां भौतिक और डिजिटल संसाधन एक साथ कार्य करेंगे। भविष्य का पुस्तकालय कैसा होगा, जहां आप 24 आवर्स ज्ञान तक पहुंच बना सकेंगे, एआई आधारित और अनुशंसा सेवाएं प्रदान करेंगे, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सूचना उपलब्ध कराएगा, डिजिटल और भौतिक संग्रह को एकीकृत करेगा, शोधार्थियों को रिसर्च सपोर्ट प्रदान करेगा और विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को शोधार्थी तक पहुंचाने में मदद करेगा। डिजिटल प्रिजर्वेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, दस्तावेज और सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं। यहां ओपन एक्सेस की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, यही आधुनिक पुस्तकालय व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, जो कि है भी। लेकिन क्या तकनीक पुस्तकालयों की जगह लेगी, यह एक स्वाभाविक प्रश्न हम सभी के मन में उठता है। आज किसी भी शोधार्थी या विद्यार्थी को किसी जानकारी के लिए केवल पुस्तकालयों की अलमारी तक जाने की आवश्यकता नहीं है, वह घर बैठे दुनिया के विभिन्न पुस्तकालयों और सूचना संसाधनों तक पहुंच सकता है। ओपन ऑनलाइन कैटलॉग, डिजिटल लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, ई बुक्स और ई जर्नल आज आधुनिक पुस्तकालय सेवाओं के महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जब इंटरनेट इतनी जल्दी और इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकता है तो फिर पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों? हाँ, ये प्रश्न सभी के मन में स्वाभाविक रूप से उठना भी चाहिए। लेकिन सूचना और सही ज्ञान में अंतर क्या है? इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन हर व्यक्ति जानकारी की विश्वसनीयता को कैसे प्रमाणित करे, यह केवल और केवल पुस्तकालय अध्यक्ष ही बता सकता है। आज हमारे सामने फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जैसी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुस्तकालय अध्यक्ष केवल एक पुस्तकों का संरक्षक नहीं है, है, वह इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, नॉलेज मैनेजर, रिसर्च सपोर्टर, डिजिटल क्यूरेटर और इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक्सपर्ट है। वह विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को सही सूचना खोजने, उसका मूल्यांकन करने और उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने में सहायता करता है। इतिहास से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक पुस्तकालय की यात्रा वास्तव में ज्ञान की यात्रा है।
0: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता, केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की

0: समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे सिटीजन्स रिसीव शेयर एंड रेस्पॉन्ड टू

0: awareness.
1: You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand, and respond to concerns of the people.
2: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जाँच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाये। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो

0: गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority. says Central

0: क्या हो रहा है? कंसोल में है?
1: वो क्या नाम को उधर के फ्लिकर नहीं दिख रहे हैं।
0: वो तो पढ़ रही
2: है। मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहराह 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है

0: नीदरलैंड्स में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में गोल में भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी। मानव सुथर ने पहली मर्तबा 10 विकेट हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जीर कयादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: मुजविजा प्रोजेक्ट तकरीबन 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अहम सियाहती मकामात तक रेल राबता बेहतर होगा और अहम अशिया की नकलो हमल मुस्तहकम होगी, जिनमें कोयला, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज शामिल हैं। जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहरा 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रूपये की कुल सरमाया लागत आएगी।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मेयार के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कम लागत हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के मेयार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज नई दिल्ली में टनल्स एंड ब्रिजेस कॉन्फ्रेंस 2026 के 4th एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मौजूदा जब्तों का जायजा लेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और बरवक्त तकमील की जिम्मेदारी वाज़ह तौर पर असल कॉन्ट्रैक्टर से मंसूब रहे। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि वजारत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स का उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जायजा ले रही है और ये अमल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर नाफिज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा टेंडर की अहलियत को कारकर्दगी के जायजे से मुंसलिक करने की भी तजवीज है। हिमालयी खितों में तूड़े खिसकने, शदीद मौसम, कुदरती आफात और लॉजिस्टिक दुश्वारियों समेत तामीरात को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हिमालय में जेरे जमीन सुरंगों और पुलों की तामीर का काम काली मिट्टी की चट्टानों वाले इलाकों के मुकाबले ज्यादा चैलेंजेस से भरा है। झारखंड में JPSC JSSC से मुतालिक तलबा का 26 रोजा एहतजाज खत्म हो गया। रियासती हुकूमत की जानिब से भर्ती के मुख्तलिफ इम्तिहानात को मनसूख करने के फैसले और मुबैना बेजाब्तगियों में तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद ऐसा हुआ है। ताहम इस फैसले से वो उम्मीदवार नाखुश हैं जिनकी मनसूख हुए इम्तिहानात के जरिए पहले ही तकर्री की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत की जानिब से 22 इम्तिहानात को मनसूख करने के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किए जाने और JPSC सिविल सर्विसेज और JSSC CGL समेत 45 इम्तिहानात में बेसाब्तगियों की तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है।

नहीं हो रही है और ना ही इस तरह का कोई प्रोग्राम है। जनाब ट्रंप का यह बयान उनके दामाद और नुमाइंदे जैरेड कशनर के उस बयान से मुतजाद है जिसमें कशनर ने कहा था कि तेहरान के साथ रबते जारी हैं। इस दौरान ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने दावा किया है कि तेहरान को खुद सुपुर्दगी करवाने में नाकाम रहने के बाद अब वाशिंगटन मुजाकरात की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा कि आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पर नजरसानी चाहेगी जिसके तहत उसने साबिक वजीर आजम इमरान खान को जामे तिब्बी जांच के लिए एक अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आइंदा कुछ दिनों में जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान को जामे तिब्बी जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा बैन अलावामी अस्पताल मुंतकिल करने के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जानब से हुक्काम को हिदायत दिए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अस्पताल में दाखिल किए जाने और अपने कुनबे से मिलने के सिलसिले में मुख्तलिफ अर्जदाश्तों की समात के दौरान यह हुक्म सुनाया। अदालत ने कहा कि यह हुक्म इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलतों तक रसाई की आईनी गारंटी के पेश नजर दिया गया है। हॉकी में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में जारी एफआईएच आलमी कप में आज इस बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया है। इस शिकस्त के साथ ग्रुप मरहले में पाकिस्तान की मुहिम खत्म हो गई है। मैच का दूसरा क्वार्टर इंतहाई दिलचस्प रहा जहां दोनों टीमों ने 9 मिनट के दौरान 4 गोल किए। इससे पहले भारत ने वेल्स को 3-1 से हराते हुए अपनी मुहिम का आगाज किया था। इससे पहले भारत को इंग्लैंड के हाथों 4-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ग्रुप डी से भारत और इंग्लैंड अगले राउंड में पहुंच गए हैं जबकि पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया है। आज गोल में पहले टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका पर 165 रन से शानदार जीत दर्ज की। भारत को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था और लंच के बाद उसकी पूरी टीम 206 रन पर आउट हो गई। भारत के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथर ने भारत की जीत में इंतहाई अहम रोल अदा किया और उन्होंने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेट हासिल किए और पहली मरतबा टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए जबकि ये उनका महज दूसरा टेस्ट मैच था। 24 साल भारतीय खिलाड़ी बैरून मुल्क 10 विकेट लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र स्पिन गेंदबाज भी बने। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी काबीना ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। उसने 4 रियासतों में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहरा 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जैली ठेकेदारी से मुतालिक जाब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदाम की सताइश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में दुरुस्त काबिल भरोसा और शहरियों पर मरकूज हुकूमती रबते पर जोर दिया है। और नीदरलैंड्स में मर्दों के एफआईएच हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

咱单靠

فأجاءها المخاض إلى

Yeah.

0: المتعلقة بالامتحانات وذلك لمنع التسريب أوراق الأسئلة في المستقبل. قالت رئيسة الهند دروبادي مورمو أمس إن عالم التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد والسياسات العامة يشهد تغيرات متسارعة، وجاء ذلك خلال تفاعلها مع المتدربين من موظف الخدمة الهندية للمعلومات والخدمة الهندية للإعصاب في قصر راشتراباتي بهافان. قال وزير النقل البري والطرق السريع الهندي نيتين غادكاري أمس إن الأولوية القصوى للحكومة تتمثل في توفير بنية تحتية عالية الجودة مع الحفاظ على فعالية التكلفة، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن جودة تطوير البنية التحتية. أعلنت حكومة جامو وكشمير رسميا سياسة تجميع الأراضي لعام 2026 التي تضو إطارا للتنمية الحضرية المخططة من خلال التجميع الطوعي للأراضي من جانب ملاك الأراضي والجهات المعنية بالتنمية. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं, और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमीडीह पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितम्बर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी

राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। नीदरलैंड्स के आम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आपने सुना फिल्म राम और श्याम का ये गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की थी। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आखिरी गीत। फिल्म का नाम है सीता और गीता, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं। इस गीत के साथ ही अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को हैं। आप समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजपूत ने कहा, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24x7

0: सेवन चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स में आम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। वक्त है गीत गजल कार्यक्रम का। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारी सी गजल के साथ, जिसे गाया है मिताली ने।

उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन, आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम। अभी आपने कामचोर फिल्म से इस गीत को सुना, आइए अब सुनते हैं एक और प्यारी सी गजल।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

गीत गज़ल कार्यक्रम में हमने अगला गीत या अगली गज़ल ली है फिल्म पिंजर से, स्वर जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम के हैं।

आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। अभी आपने ये गजल सुनी या ये गीत कहें फिल्म पिंजर से, जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम की आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। कोशिश यही कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक रहे, और गजलें और गीत तो ऐसे होते हैं जो सबको पसंद आते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, जिनमें एक इत्मीनान है, जिनमें एक सुकून है, जिनके अंदर एक ऐसा जज्बात है जो जिंदगी को अपनी तरह सुनाई देता है। जो संगीत है वो ये दर्शाता है या ये कहता है कि सरोकार तुमसे है, सरोकार मुझसे है। कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। ये थी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

0: चार बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति त्रिणाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

रचना। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में आइए अब सुनते हैं उषा विजय कुमार को राग चारुकेशी में वाद्य गुट्टू।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़। DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पति वार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026 सुबह के 4:54 हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की हम आपको जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद आप प्रातः 5 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। पाँच बजकर 10 मिनट का समय रहेगा आओ योग करें कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत आज आप समझेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पाँच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत। भारतीय सुगम संगीत के कार्यक्रम में 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है, जिसमें प्याज वसीफुद्दीन डागर के स्वर में आप सुनेंगे राग।

0: हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के साथ सुबह 6:05 पर। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है और 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन राजा राम मोहन राय के विचार। 6:45 का समय रामचरितमानस से अयोध्या कांड भाग 23 आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल में 13,031 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव

0: ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमुंडी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर रेल मार्ग की वृद्धि होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब इस महीने की 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 4 नवम्बर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल है। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार के इस फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और अब खेल खबरें। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। उधर श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर सिमट गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कुछ हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणता पूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें।